0: Pradesh. He will come and do the investigation on this case.
1: Right, Ajay, of course, thank you for getting us those details. We're talking about this three-story commercial building where this tragic fire that claimed 15 lives was issued a demolition order back in 2016, 10 years back, over unauthorized construction. But the order was revoked less than 2 months later. And of course, like Ajay was mentioning, there was a pet shop which was in the facility. There was also a clinic that was there, and also an animation center where these students had gathered yesterday. A very tragic incident in which, you know, this entire tragedy could have been averted had those norms been followed, those norms that had been flouted.
2: लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है, वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत, प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, उन पूरे परिवारजनों के प्रति, और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।
3: लखनऊ में एक आग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें कि भारी जनहानि हुई है, जो अत्यंत पीड़ादायक है, और इस कठिन घड़ी में हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है, और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, और प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है, और तुरंत मैं लखनऊ के लिए इसमें प्रस्थान कर रहा हूं और मैं जाकर स्थिति का जायजा लूंगा। लेकिन जो कुछ भी घटना हुई है, बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, मैं उसके कारण बेहद दुखी हूं। मैं तुरंत लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहा हूं।
1: Defense Minister there saying that responsibility will be fixed, and the Chief Minister saying action will be taken. With that, we're slipping into a short break, getting you the very latest on the other side.

0: Well, we begin with tragic details this morning. The death toll in the Lucknow fire has risen to 15. Police have arrested 4 people, and Ajay Dubey is currently reporting with the details that have emerged. Let's listen in.
1: ये अंदर का स्टोर के हम सामान दिखा रहे हैं आपको, किस तरीके से अंदर की तरफ आग थी और इस आग के चलते सब कुछ यहाँ तहस नहस हो चुका है। राशन की जो दुकान यहाँ पर जानवरों के खाने पीने की थी।
2: साथ साथ
1: राजेश सर, सीधे ऊपर जाओ थर्ड फ्लोर भाई, रिकॉर्ड करके फर्स्ट

0: Well, the death toll in the Lucknow fire has risen to 15. Police have arrested 4 people, all identified as joint owners of the building. In fact, they have been identified as Ramkrishna Upadhyay, Virendra Prasad Shukla, Tushar Krishna Jaiswal and Suresh Kumar Sahu. Meanwhile, you must know the premises have now been sealed as investigators begin the painstaking task of establishing exactly how this tragedy unfolded. Teams from the FSL Forensic Unit and the Fire Brigade will collect evidence from this site as part of this investigation. But you know, even at this early stage, troubling questions are emerging. A receipt for house tax payment accessed by NDTV that indicates that the structure was approved for residential use while allegedly being operated for commercial activity. Investigators are also examining reported safety lapses, including the absence of emergency exits and allegations that access to that rooftop that you see on the visuals there, often considered a last resort evacuation route during a fire, was blocked. But 15 people have lost their lives. Police have arrested 4 people. Ajay Dubey is on the spot. Let's listen in.
1: ये जो बुलेट्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर दूसरे व्हीकल हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पर गले हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए इन गाड़ियों की स्थिति और ऊपर की तरफ देखिए एसी के कंडेंसर्स किस तरीके से गले हुए हैं। अब हम आगे बढ़कर सीढ़ी की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे तस्वीरें कि क्या अंदर की स्थिति थी, किस तरीके की चुनौती थी। इन चुनौतियों के बीच से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता आगे बढ़कर इन चुनौतियों को दिखा रहे हैं। कैसे देखिए आग की लपटों का असर किस तरीके से यहाँ पर है, सब कुछ काला हो रखा है। आगे बढ़कर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अंदर की तरफ सब कुछ जला हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो पेट शॉप है, पेट शॉप के अंदर की तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पेट शॉप के अंदर की तरफ जहां पर स्टॉक रखा हुआ था ये स्टॉक जल रहा था। और इस स्टॉक को देखिए और समझिए जो इस जगह है सब कुछ बिखरा हुआ है। भीषण आग इसी हिस्से से ऊपर की तरफ चढ़ी थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ अंदर बिल्डिंग के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरों के साथ हम आपको अंदर का दिखाएंगे। अब उस फ्लोर पर हम पहुंच गए हैं जहां पर ये मूल हादसा हुआ था और इसके अंदर का स्टॉक है और सीधे अब उस

0: की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेड बॉडीज मिली है, जिस जगह से ये डेड बॉडीज मिली है। और इन डेड बॉडीज के पीछे ये वो दरवाज़ा है जो दरवाज़ा खुला नहीं था और ना खुलने के चलते तमाम डेड बॉडीज ही मिली थी। अंदर की तस्वीरें देखिए, ये गड्ढा खुला हुआ है और इसी गड्ढे से डेड बॉडीज को निकाला गया था। ये वो कंप्यूटर सेंटर है जहाँ पर डेड बॉडीज मिली थी, अंदर की तरफ आग नहीं थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये डेड बॉडीज मिली थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंदर की तमाम के, अंदर आग के बाद किस तरीके से सब कुछ बिखरा हुआ है, अंदर का असर हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर क्या कुछ हुआ था, इसी के बाद हमें यहाँ पर तमाम चीज़ें बिखरी हुई दिखाई दी थी। तो देखिए, ये वो तस्वीरें हैं, यहाँ तक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आग के अंदर देखिए कैसे यहाँ पर सब कुछ जला बिखरा है। इस कोने से बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे, ये जो कोना है इसी कोने से थार को पकड़कर बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे। और ये वो पूरा घटनाक्रम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।
1: Well, this death toll and this tragedy has risen to 15 as we are reporting, and this investigation is no longer only about the cause of this fire. It is about accountability, it's about regulation, and whether warning signs were ignored until it was too late. Ajay Dubey is back with us from the spot. Let's listen in.
0: No, nahi gate se nikle, idhar se kyun gaye?
2: Theek, bahar bahar bahar,
3: hello,
2: bahar bhaiya, bahut khatarnak building hai, bahar chaliye.
1: Well, police have arrested four people, all identified as joint owners of this building. They have been identified as Ramkrishna Upadhyay, Virendra Prasad Shukla, Tushar Krishna Jaiswal and Suresh Kumar Sahu. Meanwhile, the premises have now been sealed as investigators begin the painstaking task of establishing exactly how this tragedy unfolded. Teams from the FSL Forensic Unit and the Fire Brigade will collect evidence from this site as part of their investigation. But even at this early stage, you must note, troubling questions are emerging. Let's dip into what Ajay Dubey has to say first before I take you through the finer details.
0: Roll cut.

0: फर्स्ट फ्रेम लेकर चलाओ।
1: लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है, वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्य में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पर जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।
2: लखनऊ में एक आग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें कि भारी जनहानि हुई है, जो अत्यंत पीड़ादायक है। और इस कठिन घड़ी में हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है, और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है और तुरंत मैं लखनऊ के लिए इसमें प्रस्थान कर रहा हूं और मैं जाकर स्थिति का जायजा लूंगा। लेकिन जो कुछ भी घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, मैं उसके कारण बेहद दुखी हूँ। मैं तुरंत लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ।
3: चार बच्चे घायल हुए हैं, इनको KGMC ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह महोदय और DGP महोदय मौके पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अलीगढ़ में सारे प्रोग्राम रद्द करके यहां पहुंच रहे हैं। पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं और प्राथमिकता भी है घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, और घटना कैसे घटी, क्यों हुई, इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे। लेकिन ये तय है कि इस पीड़ित परिवार के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है। हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे। घटना बड़ी भयावह है और इसका मतलब व्यक्त करना भी हमारे लिए मुश्किल है।
4: में बहुत भीषण, बहुत दर्दनाक ये हादसा हुआ है, जिसमें 15 युवाओं की मौत हो गई है और काफ़ी लोग उसमें घायल हैं। ये केवल हादसा नहीं है, ये सरकार और प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है, जिसके कारण से इतना दर्दनाक हादसा हुआ है। वो आवासीय क्षेत्र था, उस आवासीय क्षेत्र को कमर्शियल करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बहुत पैसा लिया और ये देखा नहीं कि वहाँ पर आग बुझाने के लिए कोई फायर सेफ्टी सिस्टम लगा है कि नहीं। वहाँ पर केवल एक ही गेट था, अगर दो गेट होते तो बाहर लोग निकल गए होते। उसमें कुछ लोग जल के मरे हैं, बाकी लोग आग से जब भाग करके बाथरूम में गए और छिप गए तो धुएं से, दम घुटने से उन लोगों की मौत हो गई।
5: My colleague Ajay Dubey joins us live from the spot of the tragedy at the moment. Ajay, take us through what you're seeing currently and also the specific charges that have been invoked against the four arrested building owners. We are also picking up on the fact that there were several lapses that have now come to the fore. Ajay, am I audible to you?
6: Yes, I can hear you, and I will show you the visuals, the real-time details of the event. Few minutes before, we were on the top floor where this incident took place, where 15 dead bodies they have found, and again, I will be showing you the visuals of the top floor. We have shown you the details, how from the most corner side, the students, they have tried to came down from the wire. You can see in the visuals. Right now, you can see police individuals standing on the door so that no one can get inside, and the visuals, they are telling the story. We were on that floor. We were telling the details how those two students came down from the corner, how they were trying to hide inside the bathroom to save themselves. So this is what we are telling you from the top floor. And we have seen the floor where the food of pets were stored and the fire expanded because of that shock, we were informed. So again, I will be showing you the visuals exclusively. We have told the story on NDTV. We were on first on the third floor where this incident, dead body were found. And see the details right now. Police individuals, they were standing on the gate so that no one can get inside. The investigation is going on. The SIT will come later on this building and they will do the investigation for the case.
5: Right. Ajay, we are given to understand that the house tax records that we have accessed, they classify the building as residential. Do authorities have evidence showing when and how it began operating as a commercial center?
6: We have asked this question yesterday to the head of LDA, to the VC of LDA, and he did not answer. He left that space after Chief Minister left this area. He also left the space. We tried to confront him to get the details, but he did not answer. So for this building, the local people who were staying there, they came here in the morning and they were telling that it was a residential building, and later on they have converted into a commercial building. That is what the eyewitness, they were telling us. But with the details, what we have seen inside, a horrifying visuals where keyboards, we saw the keyboards were melted down, the computer units were melted down. Horrifying visuals we have seen inside. And right now, as you can see in visuals also, the unit from the Nagar Nigam, the local municipal body of Lucknow, they are here to do their clean process and to get details from inside. Police is also standing right now. So this is the detail we are telling you from the ground.
5: Right. We're also given to understand that beyond the building owners, the investigation is now widening. Tell us, where does the probe stand? Is it determining whether any officials approved, ignored, or failed to act on the violations?
6: I cannot hear your audio clearly because of noise here, but let me tell you again what we can see right now here. You can see the debris. There is a burned stock, food stock of pets. You can see in visuals. And the experts were telling us yesterday, the fire brigade team were telling us yesterday that these are the stock. They are the basic reason behind the this aggressive fire. The way this fire expanded in this building, the food stock is the main reason. And we'll be showing you the visuals inside. There is grass also. It is a food for the pets. And it is also burned down. And in details, we can see other things. So regarding the investigation, SIT will come later on. They will the investigation. The reason behind this incident is still they are looking after what is the reason behind the incident. But the permissions, that are the big questions, and that is the reason Chief Minister was very angry yesterday when he reached to the spot. Later on, he reached to his house and he was part of a meeting arranged, and he scolded bureaucrats badly, and he said that he wants a strict action on the issue. And later on, we saw suspension of various officers in various departments, and arrest also. We have seen arrest. Four individuals got arrested yesterday. And right now, investigation is going on in this case.
5: Right. Ajay, do stay on with us as we revert to you in just a moment. At the heart of this Lucknow tragedy are two separate questions. What caused the fire? And what allowed it to become so deadly? The investigation will answer the first. The second is already raising some serious concerns. One issue relates to regulation. You see, under existing fire safety norms in many jurisdictions, a fire no objection certificate, a fire NOC, is generally mandatory for buildings above 50 meters in height. Investigators will examine which fire safety requirements applied and whether they were complied with in this case. The second issue is land use. Documents accessed by NDTV clearly indicate the building was approved for residential use. Investigators will now determine whether commercial permissions were actually obtained prior, before they actually began operating as a commercial center with a large student footfall as well. And then, of course, there are also questions about access. You see, dense urban construction often leaves little room for emergency vehicles, rescue operations, emergency exits usually have a question mark. Ground floor commercial activity, multiple air conditioning units, heavy electrical loads, as Ajay Dubey has shown us briefly, can further complicate both fire prevention and firefighting efforts. At this stage, investigators have not officially concluded which of these factors contributed to these deaths, but the emerging picture that suggests that the tragedy may have been shaped as much by the lack of emergency exits, so essentially building design, occupancy and also safety preparedness, as by the fire itself. We also have an insider report from the spot of the tragedy that Ajay Dubey has just sent across. Take a look at the report.
6: जो खाने पीने का जो जानवरों का सामान है वो बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है. इन बाइक्स को देखिए किस तरीके से, ये जो बुलेट्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं. व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर दूसरे व्हीकल हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पर गले हुए दिखाई दे रहे हैं. आप देखिए इन गाड़ियों की स्थिति और ऊपर की तरफ देखिए एसी के कंडेंसर्स किस तरीके से गले हुए हैं. अब हम आगे बढ़कर सीढ़ी की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे तस्वीरें की क्या अंदर की स्थिति थी, किस तरीके की चुनौती थी. इन चुनौतियों के बीच से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता आगे बढ़कर इन चुनौतियों को दिखा रहे हैं. कैसे देखिए आग की लपटों का असर किस तरीके से यहाँ पर है. सब कुछ काला हो रखा है. आगे बढ़कर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अंदर की तरफ सब कुछ जला हुआ दिखाई दे रहा है. ये वो पेट शॉप है. पेट शॉप के अंदर की तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पेट शॉप के अंदर की तरफ जहाँ पर स्टॉक रखा हुआ था ये स्टॉक जल रहा था. और इस स्टॉक को देखिए और समझिए जो इस जगह है सब कुछ बिखरा हुआ है. भीषण आग इसी हिस्से से ऊपर की तरफ चढ़ी थी. तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. इन तस्वीरों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ अंदर बिल्डिंग के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरों के साथ हम आपको अंदर का दिखाएंगे. अब उस फ्लोर पर हम पहुँच गए हैं जहाँ पर ये मूल हादसा हुआ और इसके अंदर का स्टॉक है. और सीधे अब उस फ्लोर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेड बॉडीज मिली है. जिस जगह से ये डेड बॉडीज मिली है और इन डेड बॉडीज के पीछे ये वो दरवाज़ा है जो दरवाज़ा खुला नहीं था और ना खुलने के चलते तमाम डेड बॉडीज थी मिली थी. अंदर की तस्वीरें देखिए, ये गड्ढा खुला हुआ है और इसी गड्ढे से डेड बॉडीज को निकाला गया था. ये वो कंप्यूटर सेंटर है जहाँ पर डेड बॉडीज मिली थी. अंदर की तरफ आग नहीं थी. ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं. ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये डेड बॉडीज मिली थी. एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंदर की तमाम के अंदर आग के बाद किस तरीके से सब कुछ बिखरा हुआ है. अंदर का असर हम आपको दिखा रहे हैं. अंदर क्या कुछ हुआ था इसी के बाद हमें यहाँ पर तमाम चीज़ें बिखरी हुई दिखाई दी थी. तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं. यहाँ तक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. तो आग के अंदर देखिए कैसे यहाँ पर सब कुछ जला बिखरा है. इस कोने से बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे. ये जो कोना है इसी कोने से धार को पकड़कर बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे. और ये वो पूरा घटनाक्रम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं. कीबोर्ड चलाओ कीबोर्ड चलो नया वक्त. आग का असर देखिए किस तरीके से. यहाँ कीबोर्ड है, ये वो कंप्यूटर शॉप है उसका कीबोर्ड है. किस तरीके से सब कुछ गला हुआ है. ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं. अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं. इधर देखिए कैसे कुर्सियाँ कीबोर्ड सब कुछ गला हुआ है. ये वो कोना है जहाँ से कूद रहे थे छात्र.
5: ऑलराइट, एज इन्वेस्टिगेटर्स पीस टुगेदर व्हाट हैपेंड इन दिस ट्रेजिक फायर इन लखनऊ. The focus is now shifting from the fire itself to a series of critical safety questions. The first is perhaps the most important. Why was there no designated fire exit? In any emergency, evacuation routes can mean the difference between survival and tragedy. That's common sense. Investigators will examine whether occupants had any clearly marked alternative escape path once smoke and flames spread through this entire building. The second question concerns basic firefighting preparedness. Were portable fire extinguishers installed inside the premises? Were they functional? And could they have helped contain the blaze as far as the initial stage is concerned? Authorities will also look at fire detection and alarm systems. Was there any mechanism to alert people, the students, other staff, the moment the fire broke out? Early warning systems, as you know, often provide the crucial minutes needed for evacuation. Another major area then is electrical safety and the scrutiny of it. Was the wiring compliant with safety norms? Were there overloaded circuits, faulty connections, or other electrical hazards that could have either triggered or worsened this fire? And finally, investigators will examine whether regular fire safety audits and inspections were ever conducted. If risks existed, were they identified? Were they documented or even addressed? Were warning signs overlooked? These are all the questions at this stage. These remain open questions. The answers will determine Whether this was simply a devastating accident or whether preventable lapses contributed to the loss of 15 lives. Ajay Dubey continues to track the latest for us, but for now, let's turn our attention to breaking news coming in from Visakhapatnam. At least 2 workers have been killed, many others feared injured in a major fire mishap at the Paravada Pharmacy in Visakhapatnam earlier today. The incident, we're told, occurred on the premises of Dakshin Energy at Parvada on the outskirts of the port city, and senior police and fire officials were rushed to the spot. Efforts are currently underway to douse this fire, in which many other workers are feared to have been trapped. This fire accident was reported in Jawaharlal Nehru Pharmacy. Administration and Fire Safety Wing have reached that spot. They are actually working towards dousing that fire. Ashish Pandey tracking the latest for us. Ashish, certain reports state that 2 people have lost their lives. What are the details you can disclose at the moment, and what do preliminary reports state?
0: This particular industrial area is located in Anakapalli district of Andhra Pradesh near Visakhapatnam. At around 5:45 to 6 a.m. early this morning, a fire accident was reported in one of the industrial units inside the Pharmacity Industrial Park of Anakapalli. After receiving the information, fire tender officials as well as district officials rushed to the spot. They brought the fire under control. At least 2 fire tenders were engaged in firefighting. Unfortunately, 2 workers who were present inside the unit, they have lost their lives due to burn injuries. Rest of all employees and all workers who were present in the shift or in the factory, they have been evacuated safely. Right now, authorities are curtailing the fire. What we have learned and what local officials have confirmed, that fire has been brought under control. But since this is an industrial park and several other kind of chemical and other hazardous materials are kept there, so they are securing the area. But yes, the fire has been brought under control. Unfortunately, in this tragic fire accident, 2 workers have lost their life.
5: Ashish, as always, thank you so much for joining us with the latest details. Tragic details coming in from Anakapalli in Andhra Pradesh, where 2 people have lost their lives in this tragic blaze. All right, on that note, let's turn our attention to further breaking news we're tracking. Well, as different parties gear up for the upcoming Uttar Pradesh polls, the Congress appears to be sending a pointed message to its allies. In fact, Mr. Masood has said no party can take on the BJP alone and told his allies that they should hold the Congress's hand firmly against the BJP because the Congress alone cannot shoulder the entire responsibilities. Further adding that alliance parties must also speak on issues and calling for better coordination among the allies, also echoing Mr. Salman Khurshid's message. We have some crucial political reactions lined up for you from Imran Masood and Salman Khurshid. Listen in.
7: हमारा हर विषय के ऊपर हम ही लोग सड़क के ऊपर उतर के आंदोलन कर रहे हैं हर विषय के ऊपर अभी नीट के ऊपर हमारा आंदोलन था कौन सा विषय ऐसा है जिसके ऊपर हम नहीं बोलते हम तो लगातार हर विषय के ऊपर मुखरता के साथ बोलने वाले हम ही कहीं मंदिर के चंदा चोरी हो रही है उसके ऊपर भी मुखरता के साथ बोल रहे हैं मस्जिदों के ऊपर बुलडोज़र चलता है मज़ार तोड़े जाते हैं कांग्रेस के लोग ही मौके पर जाते हैं कांग्रेस के लोग ही बात कर रहे हैं तो ये मुसलमान के साथ जो जुल्म हो रहा है इस जुल्म के ऊपर भी कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा सिर्फ जिम्मेदारी कांग्रेस की है
8: तो आप बताइए आपके सहयोगी क्यों नहीं बोल रहे हैं अखिलेश यादव
7: ये तो ये जवाब तो वही देंगे देखिए मैं अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं मेरी हैसियत नहीं है कि मैं अखिलेश जी के लिए कोई बात कहूँ या अखिलेश जी को मैं बताने की कोशिश करूँ
9: देयर इज अ गुड डिसेंट अलायंस बिटवीन समाजवादी पार्टी एंड द कांग्रेस पार्टी ग्रेट पॉसिबिलिटीज ऑफ what can happen in Uttar Pradesh. Right now to sit here and predict we will win and so-and-so will lose and so-and-so will not win, etc., it's probably premature because we have a lot of work to do. A lot of work to do on the ground ourselves and a lot of work to do in terms of how we stitch together the alliance. That is very, very critical. If we have a decent alliance, if the alliance truly reflects participation of both sides in a sense of complete commitment, we have a very, very good chance.
5: Well, Congress MP Imran Masood has issued a pointed appeal to India bloc allies, arguing that no party can take on the BJP alone and that alliance partners must stand shoulder to shoulder with the Congress. More significantly, Mr. Masood has said that other parties in the alliance should also speak out on issues affecting Muslims and raise concerns over alleged atrocities rather than leaving the Congress to carry that political responsibility all by itself. And adding to that conversation is senior Congress leader Salman Khurshid, who has stressed the importance of a decent alliance to counter the BJP. My colleague Jainendra joins us with all the latest details coming in. Jainendra, is the Congress signalling that some India bloc partners have been reluctant to speak on issues concerning Muslims?
10: Yes, here the main issue is that not much time is left for UP elections, but seat sharing talks between both parties have not started yet. So the be it Imran Masood or Salman Khurshid, both are signaling, giving signals to Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav that seat sharing talks should start as soon as possible. And that is why these Congress leaders are trying to build a pressure on Samajwadi Party. So this is the main issue. But yesterday, Imran Masood said very critical things about Akhilesh Yadav, and he alleged that Akhilesh Yadav and Samajwadi Party do not voice the issues of Muslims and they don't speak on Muslim issues. So, but to give a message on seat sharing, Imran Masood went one step ahead and criticized Akhilesh Yadav on Muslim issues, but this shows the lack of unity in India alliance, especially in the Uttar Pradesh. And the main issue behind this is that seat sharing talks have not started yet in Uttar Pradesh. Time is not much time is left. That is why both leaders are giving message to Samajwadi Party that seat sharing talks should start as soon as possible.
5: Jainendra, we'll of course track all the insider details with you as always. Thanks so much. All right, moving on to the other big headlines we're tracking. It seems Eknath Shinde had the last laugh again because 6 out of the 9 Lok Sabha MPs from Team Uddhav Thackeray joined the Eknath Shinde-led Shiv Sena, with Mr. Shinde celebrating it as a sixer. But the political tremors may not stop there. Even as Uddhav Thackeray rushed to hold a meeting with his legislators, 3 MLAs and an MLC stayed away, fueling speculation of more exits. Among those who remained absent was MLC Sunil Shinde, who had vacated his Worli seat for Aditya Thackeray back in 2019. Additionally, Sanjay Darekar, Rahul Patil and Sanjay Potnis are the 3 MLAs who didn't show up at the meeting. And adding to the suspense, a Shinde Sena MLA has now claimed that preparations for Operation Tiger 3 are underway, hinting at another round of defections. We've lined up some crucial political reactions you cannot ignore. Listen in.
11: 4 varsha purvi 22 june 2022 minute shiv sena ke maidan ma abe uthav kela hota
12: mil
11: bata 40 amdar sobat survatila hote आणि पुन्हा चौकार नाही षटकार आता मानलेला आहे. म्हणजे काय म्हणतो त्याला शिक्षक
12: बंडोबस्त.
11: इकडे संजय देशमुख आहेत आणि इकडे नागेश आष्टीकर आहेत. म्हणजे
12: तीन संजय
11: आता बघा आपल्याकडे 3 संजय आहेत. कोणाला घ्यायचं मी आमच्याकडे 14 संजय राठोड
12: आहे.
11: भरपूर संजय आहे.
13: खाली 3 गायब आहेत.
14: 4
15: आज टाइगर 2 आज खत्म हुआ है. 6 खासदार आज प्रवेश करेंगे और इसके बाद ऑपरेशन 3 की तैयारी माननीय एकनाथ साहब के शिंदे साहब के नेतृत्व में होने जा रही है.
13: आपके गुट के मंत्रियों की एक शिकायत रही कि फंड की बहुत बड़ी समस्या है, डाइवर्ट कर दिया जा रहा है जो डिपार्टमेंट का फंड है वो स्कीम्स के लिए, और आपके मंत्रियों को आपके गुट को पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब जो ये सांसद शिकायत लेके आ रहे कि उनके पास फंड नहीं है, तो वो जो दिक्कतें हैं वो कैसे, उसका समाधान कैसे होगा? महायुति में शिंदे जी कहाँ होंगे?
16: देखिए, महायुति में शिंदे साहब और फडणवीस साहब इकट्ठा काम करते हैं, बहुत मजबूती से काम करते हैं। पवार मैडम भी हमारे साथ ही है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सब लोग
13: को फंड की समस्या नहीं है, शिंदे जी के मंत्रियों को
16: नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
5: मूविंग ऑन टू अदर न्यूज, अ मेजर पॉलिटिकल शोडाउन इज अनफोल्डिंग विद इन द तृणमूल कांग्रेस, with the rebel faction escalating its challenge to Mamata Banerjee's leadership. In a significant development, you must note, rebel TMC MLAs and leaders held a special session in Kolkata on the sidelines of the ongoing assembly session to chart their future course. The meeting, attended by dissident leaders and office bearers, saw the rebel camp take the unprecedented step of removing Mamata Banerjee as chairperson of its newly constituted National Working Committee and replacing her with Arup Roy. Adding to the pressure on the Mamata camp, former Kolkata mayor and senior TMC leader Firhad Hakim has joined the rebel faction, marking one of the highest profile crossovers so far.
17: यहाँ पर All India Trinamool Congress का जो special session का आयोजन किया गया था, उस special session में delegate लोग unanimously All India Trinamool Congress Committee और NWC इसका चुनाव हुआ है, गठन हुआ है। श्री अरूप राय जो पहला दिन से 1998 का पहला दिन से जो 138 एविडेविट हुआ था, हर में अरूप राय जी का सिग्नेचर है। तो अरूप राय जी हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुने गए हैं। इसके सिवाय अरूप राय छोड़ के और 29 लोग, टोटल 30 लोगों को लेकर NWC का गठन हुआ है।
18: कालीघाट की मीटिंग में कितना लोग था और आज का मीटिंग में कितना लोग है, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स, ये तो अभी सिर्फ MLA MP ऐसा कुछ नहीं है, ये पार्टी का डिफरेंट लेयर का जो लीडर्स है, जो वर्कर्स है, सारे के सारे आज एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप अगर समय के साथ साथ आपको परिमार्जन नहीं करते हैं तो आपको

0: जो खाने पीने का जो जानवरों का सामान था वो बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। इन बाइक्स को देखिए किस तरीके से, ये जो बुलेट्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर दूसरे व्हीकल हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पर गले हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए इन गाड़ियों की स्थिति, और ऊपर की तरफ देखिए एसी के कंडेंसर्स किस तरीके से गले हुए हैं। अब हम आगे बढ़कर सीढ़ी की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे तस्वीरें की क्या अंदर की स्थिति थी, किस तरीके की चुनौती थी। इन चुनौतियों के बीच से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता आगे बढ़कर इन चुनौतियों को दिखा रहे हैं। कैसे देखिए आग की लपटों का असर किस तरीके से यहाँ पर है, सब कुछ काला हो रखा है। आगे बढ़कर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अंदर की तरफ सब कुछ जला हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो पेट शॉप है, पेट शॉप के अंदर की तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पेट शॉप के अंदर की तरफ जहाँ पर स्टॉक रखा हुआ था ये स्टॉक जल रहा था। और इस स्टॉक को देखिए और समझिए जो इस जगह है, सब कुछ बिखरा हुआ है। भीषण आग इसी हिस्से से ऊपर की तरफ चढ़ी थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ अंदर बिल्डिंग के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बिल्डिंग के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरों के साथ हम आपको अंदर का दिखाएंगे। अब उस फ्लोर पर हम पहुँच गए हैं जहाँ पर ये मूल हादसा हुआ और इसके अंदर का स्टॉक है, और सीधे अब उस फ्लोर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेड बॉडीज मिली है, जिस जगह से ये डेड बॉडीज मिली है। और इन डेड बॉडीज के पीछे ये वो दरवाज़ा है जो दरवाज़ा खुला नहीं था, और ना खुलने के चलते तमाम डेड बॉडीज थी मिली थी। अंदर की तस्वीरें देखिए, ये गड्ढा खुला हुआ है और इसी गड्ढे से डेड बॉडीज को निकाला गया था। ये वो कंप्यूटर सेंटर है जहाँ पर डेड बॉडीज मिली थी, अंदर की तरफ आग नहीं थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये डेड बॉडीज मिली थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं अंदर की तमाम, देखिए अंदर आग के बाद किस तरीके से सब कुछ बिखरा हुआ है, अंदर का असर हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर क्या कुछ हुआ था। इसी के बाद हमें यहाँ पर तमाम चीज़ें बिखरी हुई दिखाई दी थी। तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं, यहाँ तक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आग के अंदर देखिए कैसे यहाँ पर सब कुछ जला बिखरा है। इस कोने से बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे, ये जो कोना है इसी कोने से थार को पकड़कर बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे। और ये वो पूरा घटनाक्रम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कीबोर्ड चलाओ, कीबोर्ड चलो, नया वक्त। आग का असर देखिए किस तरीके से, यहाँ कीबोर्ड है, ये वो कंप्यूटर शॉप है उसका कीबोर्ड है, किस तरीके से सब कुछ गला हुआ है। ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इधर देखिए कैसे कुर्सियाँ, कीबोर्ड सब कुछ गला हुआ है। ये वो कोना है जहाँ से कूद रहे थे छात्र।
1: मैंने देखा है, मैंने सब देखा, मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम सीधा देखा था मैंने सब। जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, अगर उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते। बजाय ये वीडियो बनाने के बजाय अगर थोड़ा ध्यान दे लिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते, मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में, मेरी तो दुनिया उजड़ गई।
2: आपको सूचना किन्होंने दी?
3: उन्होंने मेरे को 2:15 बजे के लगभग फ़ोन किया था कि पापा यहाँ आग लग गई, बचा ले। तब हम लोग आलमबाग से अपने घर से चले, फिर रास्ते में जो है बेटा ने जो है फायर ब्रिगेड वालों को भी फ़ोन किया, फिर रास्ते में सड़क में हमें एक ओबी वैन मिली तो हमने पुलिस वालों को बताया कि हमने कहा भाई ऐसा है, उनके थ्रू भी सूचना भिजवाई। फिर हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ दमकल की गाड़ियाँ वगैरह सब पहुँची थी, पुलिस पहुँची हुई थी, अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली हमारे बेटे के बारे
4: में। एक आग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें कि भारी जनहानि हुई है जो अत्यंत पीड़ादायक है, और इस कठिन घड़ी में हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है। और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, और प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है और तुरंत मैं लखनऊ के लिए इसमें प्रस्थान कर रहा हूँ और मैं जाकर स्थिति का जायजा लूँगा। लेकिन जो कुछ भी घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, मैं उसके कारण बेहद दुखी हूँ, मैं तुरंत लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ।
5: कुल 4 बच्चे घायल हुए हैं जिनको KGMC ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह महोदय और DGP महोदय मौके पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अलीगढ़ में सारे प्रोग्राम रद्द करके यहाँ पहुँच रहे हैं। पूरी घटना की उच्च स्तरीय जाँच के निर्देश दिए गए हैं।

0: will remain in the list, and rest of the people will be out. And there are definitely our party leaders have clearly said, and what is the Election Commission requests us to do so, we will be definitely doing that.
1: All right, Mr. Gowda, thank you for joining us on behalf of the BJP. The BJP there saying that they do not have evidence yet regarding the allegations that they've leveled against the Congress, but they will actually provide it once they have access to it. For the Election Commission, as you know, the challenge is ensuring accuracy without disenfranchisement. For political parties, the focus will be on monitoring this entire process closely. And for voters, you know, the message is quite simple. Check your details early rather than discovering a problem when there's no time to fix it before polling day. On that note, let's turn our attention to what's happening in West Bengal. A major political showdown is unfolding within the Trinamool Congress, with the rebel faction escalating its challenge to Mamata Banerjee's leadership. In a significant development, rebel TMC MLAs and leaders held a special session in Kolkata on the sidelines of the ongoing assembly session to chart their future course. The meeting was attended by dissident leaders and office bearers. It saw the rebel camp take the unprecedented step of removing Mamata Banerjee as chairperson of the newly made National Working Committee and replacing her with Arup Roy. Adding to the pressure on the Mamata Banerjee camp, former Kolkata mayor and senior TMC leader Firhad Hakim has joined the rebel faction, marking one of the highest profile crossovers so far.
2: All India Trinamool Congress ka jo special session ka आयोजन किया गया था उस स्पेशल सेशन में डेलीगेट लोग यूनानिमसली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी और एनडब्ल्यूसी इसका चुनाव हुआ है गठन हुआ है श्री अरूप राय जो पहला दिन से 1998 का पहला दिन से जो 138 एविडेविट हुआ था हर में अरूप राय जी का सिग्नेचर है तो अरूप राय जी हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुने गए हैं इसके सिवाय अरूप राय छोड़ के और 29 लोग टोटल 30 लोगों को लेकर एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ है
3: कालीघाट के मीटिंग में कितना लोग था और आज का मीटिंग में कितना लोग है ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है मोस्ट ऑफ द वर्कर्स ये तो अभी सिर्फ एमएलए एमपी ऐसा कुछ नहीं है ये पार्टी का डिफरेंट लेयर का जो लीडर्स है जो वर्कर्स है सारे के सारे आज एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है क्यों क्योंकि आप अगर समय के साथ साथ आपको परिमार्जन नहीं करते हैं तो आपको ऐसे हालत फेस करना पड़ेगा जो भी पार्टी आगे सामने बढ़ा है वो समय के साथ उसको अपग्रेड किया जैसे आपका जो फ़ोन है एक ज़माने में आप बटन फ़ोन यूज़ करते थे फिर स्मार्टफोन यूज़ करते थे तब 2G टेक्नोलॉजी था फिर 3G आया 4G आया अभी 5G यूज़ कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि आपको खुद को अपग्रेड करना चाहिए
4: हमारा पार्टी को नाम यूज करके कुछ लोग कुछ कर रहे हैं एक होटल में ये इल्लीगल है उनका कोई अथॉरिटी या राइट नहीं है हम लोग ये समझते हैं तृणमूल कांग्रेस मीन्स ममता बनर्जी और ममता बनर्जी मीन्स तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी का एक लॉन्ग स्ट्रगल के ऊपर खड़ा होकर ये तृणमूल कांग्रेस है और हम लोग कोई काउंसिलर कोई एमएलए कोई एमपी कोई मिनिस्टर ये सब हो गया है अभी एक कॉन्स्पिरेसी में आकर कुछ लोग बेईमानी कर रहा है सरासर बेईमानी कर रहा है और कुछ लोगों का ऊपर दबाव डाल के पावर मिसयूज करके उसके साथ बैठने के लिए वो लोग एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है
1: All right, let's turn our attention to breaking news coming in from Punjab this morning. At a time when Chief Minister Bhagwant Mann was in Bathinda city and the police were on high alert, a petrol bomb was hurled at a homeopathic clinic on Mela Ram Road in Bathinda last night. The clinic is run by Dr. Tarsem Garg, whose family recently switched allegiance from the Aam Aadmi Party to the BJP, we're told, and it's located just opposite the recently inaugurated RSS office in Bathinda. Fortunately, no injuries were reported in this incident. However, a scooty parked in the courtyard and some plants were damaged. The petrol bomb struck a window, we're told, and burn marks were visible at the site. Gurpreet Chinna tracking the latest details for us. He's going to be joining us in just a few moments from now. But this happening at a time when Chief Minister Bhagwant Mann was in Bathinda and the police were already on high alert. A petrol bomb was hurled at a homeopathic clinic on Mela Ram Road in Bathinda city.

0: आरोप पर कोई आपत्ति नहीं है, आरोप लगाना उनका अगर उनके पास कुछ है तो वो लगा सकते हैं, लेकिन अगर लगा रहे हैं तो जो कुछ उनके पास आरोप के पीछे तथ्य है उसको प्रस्तुत करना चाहिए।
1: देखिए योगी जी ने कल साफ साफ कहा है कि भी 15 दिन का समय हमें दे दो, सारी जांच करके जो भी दोषी होगा वो जनता के सामने हम ले आएंगे, ऐसा योगी जी ने कहा। वो एक बार मुख्यमंत्री हैं, वो विश्वास करना चाहिए, एसआईटी का गठन हुआ है।
2: On that note, we're slipping into a very quick break. We're back in a moment with the latest updates for you.

आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे एनडीटीवी टॉप्स द रॉयटर्स इंस्टीट्यूट इंडिया रीच रैंकिंग्स अगेन नंबर वन इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन न्यूज रीच फॉर द सिक्स्थ ईयर इन अ रो ऑडियंसेस कंटिन्यू टू चूज एनडीटीवी अक्रॉस टेलीविजन एंड डिजिटल एनडीटीवी ट्रस्टेड अक्रॉस एवरी स्क्रीन

0: but was allegedly being used for commercial operations. The glare is on several safety violations at the property, including no emergency exits and a blocked path to the roof of the structure.
1: जो खाने पीने का जो जानवरों का सामान वो बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है. इन बाइक्स को देखिए किस तरीके से ये जो बुलेट्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं. व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर दूसरे व्हीकल हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पर गले हुए दिखाई दे रहे हैं. आप देखिए इन गाड़ियों की स्थिति और ऊपर की तरफ देखिए एसी के कंडेंसर्स किस तरीके से गले हुए हैं. अब हम आगे बढ़कर सीढ़ी की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे तस्वीरें कि क्या अंदर की स्थिति थी, किस तरीके की चुनौती थी. इन चुनौतियों के बीच से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता आगे बढ़कर इन चुनौतियों को दिखा रहे हैं. कैसे देखिए आग की लपटों का असर किस तरीके से यहाँ पर है. सब कुछ काला हो रखा है. आगे बढ़कर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अंदर की तरफ सब कुछ जला हुआ दिखाई दे रहा है. ये वो पेट शॉप है. पेट शॉप के अंदर की तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पेट शॉप के अंदर की तरफ जहाँ पर स्टॉक रखा हुआ था ये स्टॉक जल रहा था. और इस स्टॉक को देखिए और समझिए जो इस जगह है सब कुछ बिखरा हुआ है. भीषण आग इसी हिस्से से ऊपर की तरफ चढ़ी थी. तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. इन तस्वीरों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ अंदर बिल्डिंग के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरों के साथ हम आपको अंदर का दिखाएंगे. अब उस फ्लोर पर हम पहुँच गए हैं जहाँ पर ये मूल हादसा और इसके अंदर का स्टॉक है. और सीधे अब उस फ्लोर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेड बॉडीज मिली है. जिस जगह से ये डेड बॉडीज मिली है और इन डेड बॉडीज के पीछे ये वो दरवाज़ा है जो दरवाज़ा खुला नहीं था और ना खुलने के चलते तमाम डेड बॉडीज थी मिली थी. अंदर की तस्वीरें देखिए ये गड्ढा खुला हुआ है और इसी गड्ढे से डेड बॉडीज को निकाला गया था. ये वो कंप्यूटर सेंटर है जहाँ पर डेड बॉडीज मिली थी. अंदर की तरफ आग नहीं थी. ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं. ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये डेड बॉडीज मिली थी. एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंदर की तमाम के अंदर आग के बाद किस तरीके से सब कुछ बिखरा हुआ है. अंदर का असर हम आपको दिखा रहे हैं. अंदर क्या कुछ हुआ था इसी के बाद हमें यहाँ पर तमाम चीज़ें बिखरी हुई दिखाई दी थी. तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं. यहाँ तक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. तो आग के अंदर देखिए कैसे यहाँ पर सब कुछ जला बिखरा है. इस कोने से बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे. ये जो कोना है इसी कोने से थार को पकड़कर बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे. और ये वो पूरा घटनाक्रम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं. आग का असर देखिए किस तरीके से यहाँ कीबोर्ड है. ये वो कंप्यूटर शॉप है उसका कीबोर्ड है. किस तरीके से सब कुछ गला हुआ है. ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं. अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं. इधर देखिए कैसे कुर्सियाँ कीबोर्ड सब कुछ गला हुआ है. ये वो कोना है जहाँ से कूद रहे थे छात्र.
2: मैंने देखा है, मैंने सब देखा. मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम सीधा देखा था मैंने सब. जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, अगर उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते. बजाय ये वीडियो बनाने के बजाय अगर थोड़ा ध्यान दे लिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते. मेरा बेटा भी आज जिंदा होता. मेरा बेटा भी होता दुनिया में. मेरी तो दुनिया उजड़ गई.
3: आपको सूचना किन्होंने दी?
4: इन्होंने मेरे को 2:15 बजे के लगभग फ़ोन किया कि पापा यहाँ आग लग गई बचा लो. तब हम लोग आलमबाग से अपने घर से चले. फिर रास्ते में जो है बेटा ने जो है फायर ब्रिगेड वालों को भी फ़ोन किया. फिर रास्ते में सदर में हमें एक ओबी वैन मिली तो हमने पुलिस वालों को बताया कि हमने कहा भाई ऐसा है. उनके थ्रू भी सूचना भिजवाई. फिर हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ दमकल की गाड़ियाँ वगैरह सब पहुँची थी. पुलिस पहुँची हुई थी. अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली हमारे बेटे के बारे में.
3: टाइम अनामिका से आपकी मुलाकात कब हुई थी? कोई फैमिली ट्रिप है?
5: कल सुबह कोई बात हुआ बस.
3: दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील करेंगी?
6: बड़ी से बड़ी सजा मिलना चाहिए.
5: सजा तो मिलना चाहिए.
7: हम लोग कालपुर थाना से, हम लोग का थाना है ना घर का सामने.
3: हाँ.
7: थाना से आया था और हम लोग को इन्फॉर्म किया.
3: हाँ.
7: उसके बाद फोन किया हम.
3: हाँ. मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए. 4 लोग गिरफ्तार हुए.
7: आपको जो ऑफिस है इसको ठीक से देखना चाहिए था. कहाँ क्या है, नहीं इलेक्ट्रिक का सिस्टम है, ये है, ये सब देखना चाहिए था.
8: बहुत हृदय विदारक हादसा है. उसे तकरीबन 18 बच्चों की जाने गई हैं. सभी

0: तो इस मोहल्ले से लकड़ाबाग से
1: हमारे बच्चा ये बहुत शरीफ अपने काम से काम रखता था। कहाँ पढ़ते थे, क्या करते थे?
2: पढ़ता नहीं, तब जॉब कर रहा था एक हॉपर करके, एक ग्राफिक डिज़ाइनर कंपनी थी लखनऊ में, वहीं पर जहाँ आज हादसा हुआ है वहीं पर जॉब करता था, थर्ड फ्लोर पे।
1: आपके दोस्त थे तो कैसा स्वभाव था?
2: बहुत अच्छा, बेहद अच्छा।
1: कब से जॉब कर रहे थे?
2: लगभग 2 से 3 साल हो गया होगा।
1: कॉलेज पर वहाँ जॉब कर रहे, 2-3 रोज से नहीं गए थे क्या?
2: 2 दिन से छुट्टी थी ना, सैटरडे संडे। आज मैं सैटरडे संडे ऑफ रहता था हफ्ते में।
1: आपकी कब मुलाकात हुई थी?
2: मेरी परसों शाम को। नहीं कुछ नहीं कहा, बस हम लोग घूमने गए थे वहाँ, क्या नाम, चिन्हट तक, बस फिर वापस आ गए थे। आज दिन में एक बार बात हुई, 1:45 पे,
1: घटना से पहले।
2: हाँ, घटना से 15-20 मिनट पहले। मेरा एक ही दोस्त था, सिर्फ एक ही दोस्त था, वो उसके अलावा कोई दोस्त नहीं।
3: लखनऊ में एक आग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें कि भारी जनहानि हुई है, जो अत्यंत पीड़ादायक है, और इस कठिन घड़ी में हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है, और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, और प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है, और तुरंत मैं लखनऊ के लिए इसमें प्रस्थान कर रहा हूं, और मैं जाकर स्थिति का जायजा लूँगा। लेकिन जो कुछ भी घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, मैं उसके कारण बेहद दुखी हूँ, मैं तुरंत लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ।
4: कुल 4 बच्चे घायल हुए हैं, इनको KGMC ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह महोदय और DGP महोदय मौके पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अलीगढ़ में सारे प्रोग्राम रद्द करके यहां पहुंच रहे हैं। पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं, और प्राथमिकता भी है घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, और घटना कैसे घटी, क्यों हुई, इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे। लेकिन ये तय है कि इस पीड़ित परिवार के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है। हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे। घटना बड़ी भयावह है और इसका मतलब व्यक्त करना भी हमारे लिए मुश्किल है।
5: And post this tragic incident, of course, there are many questions being raised as far as lapses are concerned. 5 questions that authorities must answer at this point. Why was there no emergency exit in the building, which is mandatory? It is a commercial building. And were notices issued for violations of fire safety norms? If a notice was issued, why was the building not sealed? Because it was functional. The fire safety norms were not in place, but despite that, it was functional and the building was not sealed at all. How were commercial operations running at a residential building? That's another big question, because it was a coaching center, commercial center, but the permission was for residential building. Were inspections conducted to verify compliance with the norms? That's the next question. So a lot of lapses being found and several questions that the authorities need to answer at this stage. Ajay, of course, you were at the spot after the incident, soon after the incident as well. You continue to be there. Very shocking visuals of toxic debris and remains that you showed us. But tell us about the lapses that we've been talking about. Looks like there were no proper emergency exits. Apparently, it was supposed to be just a residential building, but commercial operations were running. If you can take us through all the violations that are coming to fore.
6: See, this is just a building, and apart from a bigger building, there is no resources or no arrangement for such challenging scenario. Let me show you the visuals. I was inside the visuals. What I have seen when we entered from the ground floor, there is a very small passage to go towards the first floor and the second floor. On stairs, there is no light, and it is very small stairs. And when this fire happened at that time, the path was totally blocked. So that was the reason students were jumping from the front side of the building. I went to that first front side also. There, what I have seen, the building is totally burned. The furniture is burned inside, and keyboard, laptop, whatever electric gadgets are there, they all are burned. And there you can see there is a wire. A student used that wire to come down, and one student also jumped from the top floor. So at that time, because of that much of heat and other reasons, students were not using the stairs and they were jumping from the top floor. And regarding arrangements, you can see there is no pipe. In commercial buildings, we have seen there is a red color of pipe for such challenging scenario of fire, so that fire can get control. But there is no such arrangement. There is no arrangement for the exit, for the emergency exit. So that is the challenge, and that is the question: what kind of permission they have received from the government to operate this commercial complex?
5: All right. Thank you, Ajay, for getting us all of those details. Of course, we'll keep tracking this story with you, and also hold all those responsible as well. Very, very tragic indeed. And now let's also look at why the fire turned deadly. There are multiple reasons for that. One is concerning the fire NOC, mandatory only for buildings above 15 meters. So 15 meters, which means a five-storied building. Three-storied building and not covered under these norms. And building approvals and land use, was commercial use clearance granted? That is something that is under question, because this is supposed to be just a residential building. Modern buildings and modern risks, floor to ceiling glass increases fire risk. And that's how the building was. False ceiling as well as wood paneling also increases fire load. And the glass facade hazard is another thing that these modern buildings have to deal with. The toughened glass can in fact trap the heat inside, and then the heat buildup can lead to flashover. Fixed glass traps smoke quicker than the rest of them inside buildings. Firefighters have fewer access points, so limited access, densely packed buildings and can hamper rescue operations. And ground floor shops can add fire risks as well. Remember, this was commercial establishment. There were shops, and of course, there was this coaching center also on one of the floors. And multiple air conditions across the building can increase electrical load. So several risks associated with modern building, and many violations as a result of which this tragic fire broke out in Lucknow. In fact, the deadly Lucknow fire has sparked a fierce political storm in Uttar Pradesh. The opposition has launched a sharp attack on the Yogi government over the tragedy. SP leader claimed that coaching institutes were allowed to operate without adequate safety norms. He questioned how such facilities were permitted to flourish in the heart of the city despite poor access routes and inadequate emergency preparedness. UP Congress Chief Ajay Rai echoed the criticism, accusing the Yogi government of turning a blind eye to violations and failing to ensure accountability. Opposition is demanding a thorough probe and strict action against those responsible.
7: भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार की पूरी पूरी गलती है. आप सोचिए कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं है. बच्चे एग्जामिनेशन के लिए, नए एडमिशन्स के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए कोचिंग में जाते हैं. सवाल ये कि जब कोचिंग मानकों पे नहीं बने हुए, तो मशरूम की तरह से मुख्यमंत्री के निवास से 2 किलोमीटर के रेडियस में सारे बड़े कोचिंग सेंटर्स बने हुए, वहाँ पे ना एंट्री एग्जिट का कोई जगह है, ना वहाँ पर अग्निशमन के दस्ते जा सकते हैं.
8: में बहुत भीषण, बहुत दर्दनाक ये हादसा हुआ है, जिसमें 15 युवाओं की मौत हो गई है और काफ़ी लोग उसमें घायल हैं. ये केवल हादसा नहीं है, ये सरकार और प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है, जिसके कारण से इतना दर्दनाक ये हादसा हुआ है. वो आवासीय क्षेत्र था, उस आवासीय क्षेत्र को कमर्शियल करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बहुत पैसा लिया, और ये देखा नहीं कि वहाँ पर आग बुझाने के लिए कोई फायर सेफ्टी सिस्टम लगा है कि नहीं. वहाँ पर केवल एक ही गेट था, अगर 2 गेट होते तो बाहर लोग निकल गए होते. उसमें कुछ लोग जल के मरे हैं, बाकी लोग आग से जब भाग करके बाथरूम में गए और छिप गए तो धुएं से, दम घुटने से उन लोगों की मौत हो गई.
9: इसके पहले भी एक होटल में आग लगी थी, वहाँ कार्रवाई हुई, पर उसका नतीजा क्या हुआ, और उसमें उनका पूरा होटल सीज किया गया, तोड़फोड़. आज वो फिर देखिए एक लाइब्रेरी में आग लगी जिसमें 6 बच्चे मर गए, जिंदा 11 बढ़ गए, 11 लोग मर गए. आप बताइए क्या है. इसे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से सरकार आंख मूंद कर बैठी है, और गलत जो इस तरह की संस्थाएं चल रही हैं उनको पूरी तरीके से सरकार का प्रोटेक्शन है और सरकार उनका सहयोग कर रही है.
10: बहुत बहुत दुखी बात. देखिए हमारे देश में सेफ्टी कोड्स वगैरह के इन्फोर्समेंट ठीक तरह नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। दिल्ली में आपको याद है दो हफ्ते पहले यही हुआ था। वेरी सैड। ओम शांति का हम पास।
5: Let's shift our focus to Tamil Nadu now. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay addressed State Assembly. Vijay has sharpened his attack on DMK. He said he had made it clear from the very beginning who his political adversary was and accused both the DMK and ADMK of attempting to prevent his political emergence. Vijay invoked legacies of C.N. Annadurai and M.G. Ramachandran, saying governments formed in 1967 and 1977 worked for common people. Vijay reiterated his support for the two-language policy and strongly opposed any attempt to impose another language on Tamil Nadu. He also renewed his criticism of NEET, calling the examination unfair. TVK chief also addressed the Karur stampede tragedy in which 41 people lost their lives. Take a look at what he said.
11: Shooting la nende nera vandi CM ana mariye sila per or image create pandranga avangalukku avanga aasai padra language laye solrom adu verum real da real kedaiyathu oru sadharana nadiganaa tha nama career thodangichu appuram apdiye sincere ah ulachi mele vandom. நம்ம கெரியரில் நாம் மேலே வந்ததுக்கு இந்த விஜய் ஒருத்தன் மட்டுமே காரணம் இல்லை, அவனோட உழைப்பு மட்டுமே காரணம் இல்லை. இந்த விஜயோட உழைப்புக்கும் உயர்வுக்கும் பின்னாடி இருக்கிற ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களோட அன்பும் அரவணைப்பும் தான் காரணம் சொல்கிறேன். 1990s ரசிகர் மன்றமாக இருந்தப்பவே மக்களுக்கு துணையாக நிற்க ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் நற்படி மன்றமாகவும் அதுக்கப்புறம் விஜய் மக்கள் இயக்கமாகவும் மாறி மக்களோட மக்களாக நின்றுக்கிட்டு இருந்தோம். 2008 ஈழத்தமிழருக்கு ஆதரவாக உண்ணாவிரதம் போராட்டம் செஞ்சோம். போர் முடிவுக்கு வரணும், நம்ம தொப்புள் கூடிய உறவுகளான ஈழத்தமிழர்களுக்கு பாதுகாப்பான நிம்மதியான ஒரு வாழ்வு கிடைக்கணும்னு அன்னைக்கே கோரிக்கை வச்சோம். 2009 ஆரம்பித்த விஜய் மக்கள் இயக்கம் வழியாக நம்மளோட மக்கள் நல பணிகளை எக்ஸ்டெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்.
5: To Maharashtra now, 6 out of 9 Lok Sabha MPs from Team Uddhav Thackeray joined Eknath Shinde-led Shiv Sena, with Shinde celebrating it as a sixer. But the political tremors may not stop there. Even as Uddhav Thackeray rushed to hold a meeting with his legislators, 3 MLAs and an MLC stayed away, fueling speculations of more exits. Among those who remained absent was MLC Sunil Shinde, who had vacated his Worli seat for Aditya Thackeray in 2019. Additionally, Sanjay Darekar, Rahul Patil and Sanjay Potnis are 3 MLAs who did not show up at the meeting. Adding to the suspense, a Shinde Sena MLA has now claimed that preparations for Operation Tiger 3 are underway, hinting at another round of defections. Let's take a look at some of the statements and reactions.
12: 4 varsha purvi 22 june 2022 minute Shiv Sena ke maidan mein abhi uthav kela hota
13: mere
12: bhai 40 amdar sobat shuruati na hote आणि पुन्हा चौकार नाही षटकार आता मानलेला आहे. मी काय म्हणतो त्याला शिक्षक
13: कोण,
12: इकडे संजय देशमुख आहेत आणि इकडे नागेश आष्टीकर आहेत, म्हणजे
13: तीन संजय.
12: आता बघा आपल्याकडे 3 संजय आहेत. कोणाला घ्यायचं मी? आमच्याकडे 14 संजय
13: राठोड आहे,
12: भरपूर संजय आहे.
14: खाली 3 गायब आहे.
15: 4
16: आज टाइगर 2 आज खत्म हुआ है. 6 खासदार आज प्रवेश करेंगे और इसके बाद ऑपरेशन 3 की तैयारी माननीय एकनाथ साहब के शिंदे साहब के नेतृत्व में होने जा रही है.
17: धमाका तो आज के दिन में 2 बार हो गया है, लेकिन अभी बहुत धमाके बाकी है और वो ऐसे धमाके नहीं है कि किसी को तकलीफ देने के लिए, किसी का मानहानि करने के लिए, जिनको माननीय एकनाथ शिंदे साहब का नेतृत्व स्वीकार है वो एकनाथ शिंदे साहब के शिवसेना में आते हैं, उनका नेतृत्व स्वीकार करते हैं। अभी बीएमसी है, एमएलए है, वो टाइम दे दे के आपको बोलेंगे।
18: आपके गुट के मंत्रियों की एक शिकायत रही कि फंड की बहुत बड़ी समस्या है, डाइवर्ट कर दिया जा रहा है जो डिपार्टमेंट का फंड है वो स्कीम्स के लिए, और आपके मंत्रियों को, आपके गुट को पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब जो ये सांसद शिकायत लेके आ रहे हैं कि उनके पास फंड नहीं है, तो वो जो दिक्कतें हैं वो कैसे, उसका समाधान कैसे होगा? महायुति में शिंदे जी कहाँ होंगे?
19: देखिए, महायुति में शिंदे साहब और फडणवीस साहब इकट्ठा काम करते हैं, बहुत मजबूती से काम करते हैं। पवार मैडम भी हमारे साथ ही है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सब लोग
18: को फंड की समस्या नहीं है, शिंदे जी के मंत्रियों को
19: नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
5: Shifting focus now, AITC faction led by Mamata Banerjee has reconstituted its National Working Committee and submitted the details to the Election Commission of India. In the submitted list, Mamata Banerjee has been shown as the chairperson of the AITC. We are told Trinamool Supremo Mamata Banerjee has submitted the list of party's new working committee to the Election Commission. The list released by the party bears Monday's date. Sources close to the Kaligat leadership indicate that Mamata sent the list to Election Commission headquarters in Delhi on Monday. Move is seen as a signal that she retains firm control over the party. Coincidentally, on the same day, Rebel Trinamool faction led by Rituparta Banerjee formed a rival working committee at a luxury hotel in New Town. All right, let's go straight across to Hrithik on this. Hrithik, of course, Mamata Banerjee has called herself the chairperson. However, the rebels have removed Mamata as the party chairperson. Take us through what's going on.
20: Well, it could be considered as a big move by Mamata camp. What we know that Mamata Banerjee led the fraction has reconstituted the National Working Committee on the very day. I remember last evening, the rebel fraction conducted a very interesting meeting in a five-star hotel here in Kolkata's New Town area and announced a new shape of National Working Committee. But what we are given to understand by the Mamata Banerjee faction that the Kaligat fraction, which is popularly known, they have already reconstituted the committee and the details have been submitted before the Election Commission, in which Mamata Banerjee remain as the chairperson of the committee and Abhishek Banerjee as the All India National General Secretary. So it has come on the very day when this rebel faction have announced the National Committee, removing Mamata Banerjee from the chairperson post, replacing her was Arup Roy, another senior party member, and also they have removed Abhishek Banerjee from the top post. Now it has come in the backdrop of this Tutu Meme that is going on, but it seemingly the sources inside the rebel fractions are telling us that they are likely to move before the poll body, claiming the party's the logo and the ownership. Amid a such situation, big move it comes. What we do understand that Mamata Banerjee's faction has reconstituted the National Working Committee and the list has been published. And which shows Mamata Banerjee remain as a chairperson. So it would be interesting to see and what would happen next and how this Tutu Meme or this slugfest between two factions pans out. Back to you.
5: All right. Hold on, Hrithik. We also have Riju Datta, who's a former TMC leader, also with us. Mr. Datta, you can see the developments that are going on at this point. Mamata Banerjee there continuing to call herself as a chairperson of the AITC, which is the Trinamool Congress. She submitted the list, but at the same time, there is the rival faction also who's removed her as the chairperson. Take us through, what you think of these contradictory moves being done, one by Mamata team and the other by the rivals or the rebels.
21: See, the team of rebel MPs have got the numbers. Let's be honest about it. In electoral politics, numbers are everything. However, they have constituted the National Working Committee. And Mamata Banerjee has also fired a list and her official communique to the election commission that this is her national working committee where she is the chairperson. But you also have to understand something. This is out of the Maharashtra playbook, the Shinde and Uddhav playbook, that this is what has been followed in Bengal. But there is also

0: है श्री अरूप राय, जो पहला दिन से 1998 का पहला दिन से जो 138 एविडेविट हुआ था, हर में अरूप राय जी का सिग्नेचर है। तो अरूप राय जी हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुने गए हैं। इसके सिवाय अरूप राय छोड़ के और 29 लोग, टोटल 30 लोगों को लेकर एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ है।
1: कालीघाट के मीटिंग में कितना लोग था और आज का मीटिंग में कितना लोग है, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स, ये तो अभी सिर्फ MLA MP ऐसा कुछ नहीं है, ये पार्टी का डिफरेंट लेयर का जो लीडर्स है, जो वर्कर्स है, सारे के सारे आज एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप अगर समय के साथ साथ आपको परिमार्जन नहीं करते हैं तो आपको ऐसे हालत फेस करना पड़ेगा। जो भी पार्टी आगे सामने बढ़ा है वो समय के साथ उसको अपग्रेड किया है। जैसे आपका जो फ़ोन है, एक ज़माने में आप बटन फ़ोन यूज़ करते थे, फिर स्मार्टफोन यूज़ करते थे, तब 2G टेक्नोलॉजी था, फिर 3G आया, 4G आया, अभी 5G यूज़ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको खुद को अपग्रेड करना चाहिए।
2: हमारा पार्टी को नाम यूज करके कुछ लोग कुछ कर रहे हैं एक होटल में, ये इल्लीगल है, उनका कोई ऑथोरिटी या राइट नहीं है। हम लोग ये समझते हैं तृणमूल कांग्रेस मीन्स ममता बनर्जी और ममता बनर्जी मीन्स तृणमूल कांग्रेस। ममता दीदी का एक लॉन्ग स्ट्रगल के ऊपर खड़ा होकर ये तृणमूल कांग्रेस है। और हम लोग कोई काउंसिलर, कोई MLA, कोई MP, कोई मिनिस्टर, ये सब हो गया है। अभी एक कॉन्स्पिरेसी में आकर कुछ लोग बेईमानी कर रहा है, सरासर बेईमानी कर रहा है, और कुछ लोगों का ऊपर दबाव डाल के पावर मिसयूज करके उसके साथ बैठने के लिए वो लोग एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है।
3: Shifting tracks, Suvendu government has triggered a fresh political row with a sharp reduction in funds earmarked for Minority Affairs and Madrasa Education Department. Government has proposed an allocation of more than 2,165 crore for 2026-27, significantly lower than 5,713 crore rupees allocated in the interim budget presented by the previous Trinamool Congress government. Earlier this year, BJP government maintains that the move does not amount to a budget cut for minorities, arguing that welfare benefits are being delivered through broader government schemes available to all citizens. Take a look at some of the reactions.
4: So give us an idea, there's also a slash in the minority budget that has been meant this time from 5,000 approximately coming down by more than 3,000 crores. What is the reason?
5: It's not a slash of minority interest. What has happened is that most of the schemes are available to any citizen of Bengal. And every minority person happens to be a citizen of Bengal, so they're not excluded from these schemes, except that there's no reservation for them in this. They are part and parcel of national life, and if they choose to avail of these schemes, they're absolutely as entitled as anyone else to do that, except they're not going to get recognition as Muslims or as Hindus. For this is just as citizens. If you're their citizens, if some people say no, our only identity is that of minorities and not as citizens, sorry, that's wrong.
4: A deep sea.
6: ये लोग बोला कि सबका साथ सबका विकास बोल रहा है, लेकिन दुख की बात यह है मुसलमान के साथ और माइनॉरिटी के साथ ये लोग इनजस्टिस कर रहे हैं। संविधान के सामने रखते हुए सरकार चलाना चाहिए, लेकिन ये लोग इनका अपना मोटो से सरकार चला रहे, ये नहीं होना चाहिए, हम विरोध कर रहे हैं। और दूसरा बात क्या है, जे हम चाहेंगे अभी जो अलॉटमेंट है उसका 100% खर्च हो।
7: जो ये बजट में बैलेंस नहीं है और जनमुखी बजट नहीं है
8: सर, 50% डिक्रीज भी किया गया है माइनॉरिटी
7: एंड माइनॉरिटी जो है उसका वेलफेयर के लिए जो एलोकेशन था, ये एलोकेशन को रिड्यूस किया गया है। मैंने पूछना चाहता हूं, रिड्यूस हो सकता है बट सरकार का धन माइनॉरिटी मीन्स मुसलमान सोचते हैं ना, माइनॉरिटी मीन्स सिख है, बुद्धिस्ट है, दोज हु आर नॉट मेजोरिटी।
3: विद दैट वी विल स्लिप इन अ शॉर्ट ब्रेक, मोर अपडेट्स कमिंग अप ऑन द अदर साइड, स्टे ट्यून्ड।

0: Tamil Nadu, they cannot, the TVK government cannot deviate from what the TVK, DMK government has created. The blueprint is already been there. That is why whatever right. the TVK government does, they will not be able to deviate from what our position, our stand is. We had a perfect, we had the right stand, we took the right, made the right moves.
1: All right, we're also joined by Rahul Eeshwar on this issue. Rahul Eeshwar, your reaction to these developments, the TVK government in Tamil Nadu, like the previous DMK government, wants to take this matter now to the top court.
2: As a Hindu activist, we all thanked Sri Vijay yesterday for his decision to save 246 crores of temple money being invested for commercial purposes. That was a very welcome move. No, Vijay is a person who is affected by all. But as an activist, I would humbly request him, please build consensus. Because Tirupandram Gudram is also, the Devathun issue is also a very sensitive issue. It involves Hindu and Muslim communities. He should try for a conciliation, not confrontation. When you
1: right,
2: go to
1: Rahul Eeshwar, but both the TVK and the DMK saying that for 100 years, a system was followed of lighting the Deepam. It's only in the last 2 years that this issue of changing the place to that, to another place next to the mosque has been creating issues, and this is something that the BJP has done in Tamil Nadu.
2: Partially, the timeline you said is right, but when sensitivities are involved, when two communities are involved, no community should feel alienated. At the same point of time, the particular judge in the Honorable Tamil Nadu High Court who has given the verdict, DMK has given impeachment motion against him. So it's a very sensitive, high-profile issue. A person like Vijay can easily build a consensus because being an Indian from South or a South Indian, we all know Vijay's mass leverage. He's a practicing Christian, but he goes to temples and mosques. He's a person who can bring some kind of a consensus. So rather than going to court and alienating one side, he should actively take up some kind of a consensus and conciliation method. And if Vijay says, people will accept, not only because he is the chief minister, but he has been active in the social field, he has been a mass movie star, perhaps only next to Rajinikanth. So he should actively take up that conciliation method. If one side loses in Supreme Court,
1: right.
2: the other side will feel alienated. So it's a sensitive issue. That sensitivity should be respected.
1: Absolutely. And a good point there, Rahul Eeshwar, they're saying that, Vijay, the new chief minister, should use his popularity and perhaps resolve this issue out of court rather than more animosity being created. Thank you so much for joining us on the program. Well, staying with news of Tamil Nadu, Chief Minister Joseph Vijay today addressed the State Assembly where he sharpened his attack on the DMK, saying he had made it very clear from the very beginning who his political adversary was and accused both the DMK and the AIADMK of attempting to prevent his political emergence. Vijay invoked legacies of C.N. Annadurai and M.G. Ramachandran, saying governments formed in 1967 and 1977 worked for the common people. Vijay also reiterated his support for the two-language policy and strongly opposed any attempt to impose another language on Tamil Nadu. He also renewed his criticism of the NEET exam. That is the medical exam that, just took place on Sunday. He called the examination unfair. The TVK chief also addressed the Karur stampede tragedy in which 41 people lost their lives.
3: Shooting lande neera vandhi CM ana mariye sila peru or image create pandranga. Avangalukku avanga aasai padra language laye solrom. Adu verum real da, real kadaiyadu. Oru sadharana nadiganatha nama career thodangichu. அப்புறம் அப்படியே சின்சியராக உழைச்சி மேலே வந்தோம். நம்ம கெரியரில் நாம் மேலே வந்ததுக்கு இந்த விஜய் ஒருத்த மட்டுமே காரணம் இல்லை, அவனோட உழைப்பு மட்டுமே காரணம் இல்லை. இந்த விஜயோட உழைப்புக்கும் உயர்வுக்கும் பின்னாடி இருக்கிற ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களோட அன்பும் அரவணைப்பும் தான் காரணம் சொல்கிறேன். 1990s ரசிகர் மன்றமாக இருந்தப்பவே மக்களுக்கு துணையாக நிற்க ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் நற்படி மன்றமாகவும் அதுக்கப்புறம் விஜய் மக்கள் இயக்கமாகவும் மாறி மக்களோட மக்களாக நின்றுகிட்டு இருந்தோம். 2008 ஈழத்தமிழருக்கு ஆதரவாக உண்ணாவிரதம் போராட்டம் செஞ்சோம். போர் முடிவுக்கு வரணும், நம்ம தொப்புள் கூடிய உறவுகளான ஈழத்தமிழர்களுக்கு பாதுகாப்பான நிம்மதியான ஒரு வாழ்வு கிடைக்கணும்னு அன்னைக்கே கோரிக்கை வச்சோம். 2009 ஆரம்பித்த விஜய் மக்கள் இயக்கம் வழியாக நம்மளோட மக்கள் நல பணிகளை எக்ஸ்டெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம். ஊழலாக செஞ்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு பேர் தான் நிர்வாகத்திறன் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழல் செய்கிற நிர்வாகத்திறனை நம்ம அரசு ஒரு நாளும் செய்யாது. பொட்டி பெட்டியா பணத்தை வச்சுக்கிட்டு பெட்டியை வச்சு எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு போதைப் பொருள் பாதுகாவல் கழக மாடல் அரசாங்கம் செஞ்ச ஒவ்வொரு ஊழலா வெளியில வந்துகிட்டு இருக்கு. டாஸ்மாக்ல அது என்னப்பா அது பேரு பார்ட்டி ஃபண்ட் கட்சி நிதி அப்படின்ற பேர்ல அடிச்ச கொள்ளையெல்லாம் ஒன்று ஒன்னா இப்போ கவர்மெண்டோட கஜானாவுக்குள்ள கொண்டு சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். நம்மளை சந்திக்க வர்ற மக்களுக்கு சரியான பாதுகாப்பு இல்லாம நம்ம கூட்ட நிகழ்ச்சிக்கு போதுமான பாதுகாப்பு இல்லாமனு இன்னும் வெளியே சொல்ல முடியாத நிறைய சூழ்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் நாம் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். பட் ஸ்டில் மைல்ஸ் டு கோ. நம்ம டிராவலில் எல்லாத்துக்கும் உச்சமாக நம்மளோட சொந்தங்கள் நம்மளோட உறவுகள் 41 பேர் கரூர் சம்பவத்தில் இழந்த வேதனையெல்லாம் எப்படி சொல்கிறதுனே தெரியல. நம்ம மனசு விட்டு என்றைக்கும் அந்த வலியும் வேதனையும் நீங்கவே நீங்காது. அதுலேயும் நம்ம மேலேயே பழி போட்ட கொடுமையெல்லாம் இருக்கும் பாருங்கள், அதெல்லாம் வேறு லெவலுங்க. என்னத்துக்கு அப்படியெல்லாம் செஞ்சாங்கன்னு தெரியல. அரசியல்னா இப்படியெல்லாம் கொடூரமா இருக்கணுமா என்ன?
1: Well, now our focus on the Lucknow fire tragedy, where 15 lives have been lost at the gaming center. 4 individuals have now been arrested in connection with this tragedy, and those arrested identified as the owners. That's Ramkrishna Upadhyay, Virendra Prasad Shukla, Tushar Krishna, Ajayswal, and Suresh Kumar Sahu. All 4 are the joint owners of this 3-story building. Meanwhile, the police have sealed the building in Aliganj, and teams from the FSL Forensic Unit Fire Brigade will collect evidence from the site as part of the investigation. A receipt for house tax payment accessed by NDTV shows the building was approved for residential use but was being used for commercial operations. The glare is now on several safety violations at the property, which includes no emergency exits and a blocked path to the roof of the structure.
4: जो खाने पीने का जो जानवरों का सामान है वो बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है. इन बाइक्स को देखिए किस तरीके से, ये जो बुलेट्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं. व्हीकल्स हैं, 2-व्हीलर दूसरे व्हीकल हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पर गले हुए दिखाई दे रहे हैं. आप देखिए इन गाड़ियों की स्थिति, और ऊपर की तरफ देखिए एसी के कंडेंसर्स किस तरीके से गले हुए हैं. अब हम आगे बढ़कर सीढ़ी की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे तस्वीरें की क्या अंदर की स्थिति थी, किस तरीके की चुनौती थी. इन चुनौतियों के बीच से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता आगे बढ़कर इन चुनौतियों को दिखा रहे हैं. कैसे देखिए आग की लपटों का असर किस तरीके से यहाँ पर है, सब कुछ काला हो रखा है. आगे बढ़कर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अंदर की तरफ सब कुछ जला हुआ दिखाई दे रहा है. ये वो पेट शॉप है. पेट शॉप के अंदर की तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पेट शॉप के अंदर की तरफ जहाँ पर स्टॉक रखा हुआ था ये स्टॉक जल रहा था. और इस स्टॉक को देखिए और समझिए जो जगह है सब कुछ बिखरा हुआ है. भीषण आग इसी हिस्से से ऊपर की तरफ चढ़ी थी. तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. इन तस्वीरों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ अंदर बिल्डिंग के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरों के साथ हम आपको अंदर का दिखाएंगे. अब उस फ्लोर पर हम पहुँच गए हैं जहाँ पर ये मूल हाथ और इसके अंदर का स्टॉक है. और सीधे अब उस फ्लोर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेड बॉडीज मिली है, जिस जगह से ये डेड बॉडीज मिली है. और इन डेड बॉडीज के पीछे ये वो दरवाज़ा है जो दरवाज़ा खुला नहीं था और ना खुलने के चलते तमाम डेड बॉडीज थी मिली थी. अंदर की तस्वीरें देखिए, ये गड्ढा खुला हुआ है और इसी गड्ढे से डेड बॉडीज को निकाला गया था. ये वो कंप्यूटर सेंटर है जहाँ पर डेड बॉडीज मिली थी. अंदर की तरफ आग नहीं थी. ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं. ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये डेड बॉडीज मिली थी. एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंदर की तमाम के अंदर आग के बाद किस तरीके से सब कुछ बिखरा हुआ है. अंदर का असर हम आपको दिखा रहे हैं. अंदर क्या कुछ हुआ था इसी के बाद हमें यहाँ पर तमाम चीज़ें बिखरी हुई दिखाई दी थी. तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं. यहाँ तक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. तो आग के अंदर देखिए कैसे यहाँ पर सब कुछ जला बिखरा है. इस कोने से बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे. ये जो कोना है इसी कोने से धार को पकड़कर बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे. और ये वो पूरा घटनाक्रम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं.
5: मैंने देखा है, मैंने सब देखा. मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम सीपा देखा था मैंने सब. जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, अगर उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते। बजाय ये वीडियो बनाने के बजाय अगर थोड़ा ध्यान दे लिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते, मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में, मेरी तो दुनिया उजड़ गई।
6: टाइम अनामिका से आपकी मुलाकात कब हुई थी, कोई फैमिली ट्रिप है?
7: कल सुबह कोई बात हुआ बस।
6: दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील करेंगी?
8: बड़ी से बड़ी सजा मिलना चाहिए,
7: सजा तो मिलना चाहिए।
6: आपको सूचना किन्होंने दी?
9: इन्होंने मेरे को 2:15 के लगभग फ़ोन किया, पापा यहाँ आग लग गई बचा लो। तब हम लोग आलमबाग से अपने घर से चले, फिर रास्ते में जो है बेटा ने जो है फायर ब्रिगेड वालों को भी फ़ोन किया, फिर रास्ते में सड़क में हमें एक ओपी वैन मिली तो हमने पुलिस वालों को बताया कि हमने कहा भाई ऐसा है, उनके थ्रू भी सूचना भिजवाई। फिर हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ दमकल की गाड़ियाँ वगैरह सब पहुँची थी, पुलिस पहुँची हुई थी, अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली हमारे बेटे के बारे में।
10: हम लोग कालपुर थाना से, हम लोग का थाना है ना घर का सामने,
6: हाँ।
10: थाना से आया था, हम लोग को इन्फॉर्म किया,
6: हाँ।
10: उसके बाद फोन किया हम,
6: हाँ। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, 4 लोग गिरफ्तार हुए।
10: तो आपका जो ऑफिस है इसको ठीक से दिखना चाहिए था, कहाँ क्या है, नहीं इलेक्ट्रिक का सिस्टम है, ये है, ये सब दिखना चाहिए था।
11: आधे घंटे में पुलिस आ गई थी, हम वही थे 1 किलोमीटर पे, हम नहीं जा पाए भैया, वहाँ नहीं जा पाए भैया, वो तैयारी नहीं, वो जॉब आ गया था, वो ऑफिस था, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, वो लाइब्रेरी नहीं थी, वो बच्चे नहीं थे, वो सब सपने सजाने, दूर से कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर से आया था भैया, किसी का कोई नहीं था, एक एक का नाम पता है मुझे। मेरा एक भाई है
12: हृदय विदारक हादसा है, उसे तकरीबन 18 बच्चों की जाने गई है, सभी को बहुत
13: इस मोहल्ले से लकड़ाबाग से
12: हमारे बच्चा ये बहुत शरीफ है, अपने काम से काम रखता था।
14: कहाँ पढ़ते थे, क्या करते थे?
15: पढ़ता नहीं, तब जॉब कर रहा था, एक हॉपर करके एक ग्राफिक डिज़ाइनर कंपनी थी लखनऊ में, वहीं पर जहाँ आज हादसा हुआ है वहीं पर जॉब करता था, 3rd फ्लोर पे।
14: आपके दोस्त थे तो कैसा स्वभाव था?
15: बहुत अच्छा, बेहद अच्छा।
14: कब से जॉब कर रहे थे?
15: लगभग 2 से 3 साल हो गए होगा।
14: कॉलेज पर वहाँ जॉब कर रहे, 2-3 रोज से नहीं गए थे
15: क्या? 2 दिन से छुट्टी थी ना, सैटरडे संडे, आज मैं सैटरडे संडे ऑफ रहता था हफ्ते में।
14: आपकी कब मुलाकात हुई थी?
15: मेरी परसों शाम को। नहीं कुछ नहीं कहा, बस हम लोग घूमने गए थे वहाँ, क्या नाम, चिन्हट तक, बस फिर वापस आ गए थे। आज दिन में एक बार बात हुई 1:45 पे,
14: घटना से पहले,
15: हाँ घटना से 15-20 मिनट पहले। मेरा एक ही दोस्त था, सिर्फ एक ही दोस्त था, वो
14: उसके
15: अलावा कोई दोस्त नहीं।
16: लखनऊ में एक आग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें कि भारी जनहानि हुई है, जो अत्यंत पीड़ादायक है, और इस कठिन घड़ी में हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है, और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, और प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है, और तुरंत मैं लखनऊ के लिए इसमें प्रस्थान कर रहा हूं, और मैं जाकर स्थिति का जायजा लूंगा। लेकिन जो कुछ भी घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है, मैं उसके कारण बेहद दुखी हूँ, मैं तुरंत लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ।
17: कुल 4 बच्चे घायल हुए हैं, इनको KGMC ट्रामा सेंटर भेजा गया है, घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं, प्रमुख सचिव गृह महोदय और DGP महोदय मौके पर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी अलीगढ़ में सारे प्रोग्राम रद्द करके यहाँ पहुँच रहे हैं, पूरी घटना की उच्च स्तरीय जाँच के निर्देश दिए गए हैं, और प्राथमिकता भी है घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, और घटना कैसे घटी, क्यों हुई, इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे, लेकिन ये तय है कि इस पीड़ित परिवार के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है, हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे। घटना बड़ी भयावह है और इसका मतलब व्यक्त करना भी हमारे लिए मुश्किल है।
1: All right, so many, you know, comments and reactions, heartbreaking accounts from the families of the 15 people who've died. But now so many questions that authorities need to answer. And the top five questions raised after the fire tragedy in Lucknow was, why was there no emergency exit in the building? We saw yesterday how the firefighters were breaking the wall on the back of the building because there was no way to get into the building. Were notices issued for violations of fire safety norms? In fact, it has been revealed a demolition order had been issued in 2016 for the unauthorized construction at this building, but it was later withdrawn. If a notice was issued, why was the building not sealed? Why was no action taken? Why was the unauthorized construction not removed? Also, how were commercial operations running here in this residential building? It was a residential building. It has now been revealed. However, as you can see, there were commercial activities running. There was a pet store. There was that animation and gaming studio at top. Were inspections conducted to verify compliance with norms? Because after the fire that took place in Delhi, in the Hosrani area, we do know the UP chief minister said and had issued an instruction to check all these fire safety of all buildings. However, several questions after the fire tragedy in Lucknow. Well, for more, let's go across now to NDTV's Ranveer Singh for all the developments. And Ranveer, the SIT is investigating this entire tragedy. 15 young people have died. What is the latest you can tell us?
18: The SIT is on the spot of the fire tragedy as well as the FSL team. They are also there. They are trying to investigate that what is the cause of fire, as well as the SIT will investigate the documents that whether it had a commercial use permission or not. The building was located in a residential area. As per LDA's document, it was registered as a residential property, but later on in 2016, the land use changed to commercial, but there was some notice because the SOPs were not followed by the building owner. So that's why LDA issued a notice and said that why don't we bulldoze this property. But later on, that notice was revoked back, and since 10 years, the commercial activities were going on. So the biggest question is that how a building is using it as a commercial property without having permission by the appellate authority, that means LDA. So SIT will investigate. In this case, they will search each and every document, as well as the FSL team will tell that what is the cause of fire. But still, the biggest question is 15 people, young people, have lost their lives, and who is responsible behind this tragedy? I have talked to many people who are kins of the deceased, and they said that whatever the report will say, they don't care because their kin will not return back. So this is the tragedy, and CM Yogi Adityanath is obviously very much angry. He held a high-level meeting yesterday and constituted an SIT who is on the fire tragedy site. And if we talk about LDA's role, then LDA also constituted a five-member committee who that committee will investigate that if there was some lapses on the side of LDA. So both the teams, the committee constituted by LDA as well as the SIT constituted by Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath. So both the teams are investigating the case, and we expect that some more actions will be taken, because till now four officials are suspended, four accused are arrested, and the SIT is investigating. So probably some more stern action can be taken in coming days.
1: Right, but Ranveer, as you said, for the families of those who died, they don't care anymore. They have lost their loved ones. Well, let's now take a look at why this fire turned so deadly. If we talk about a fire no objection certificate, which is mandatory for many buildings, however, in this case, it's mandatory for buildings above 15 meters. That means a five-story building. And this particular building was three stories high. Therefore, it did not require that fire no objection certificate from the fire authority. And that's how it managed to have so many loopholes and so many obstacles when it came to fire safety. The three-story building was not covered under these building norms. Building approvals and land use. Was commercial use clearance granted for this building? Because as we know, this building was in a residential colony. Modern buildings and modern risks. Floor-to-ceiling glass increases the fire risk, and we've seen that if you see the facade of this building before it caught fire, it was completely of glass, and there were false ceilings and wood paneling also, which increased the fire load, which caught fire very, very quickly. The glass facade is also a hazard when it comes to such crises. A toughened glass can trap heat inside and obviously make it difficult to break and let the smoke get out, because remember, many of those who were found dead in the toilets, in the rooms where they had locked themselves trying to get away from the fire, but they passed out because of the smoke. Heat

0: Buildup can lead to flash over as well. Fixed glass traps smoke inside the building. And firefighters have fewer access points. There was no fire exit for this building. There was limited access. It was a densely packed building, and this usually hampers the rescue operations. There were three stories. There was just one entrance, and that was filled with smoke, and the firefighters and emergency respondents weren't able to get in. The ground floor shops also added to that fire risk, and multiple ACs were also functioning at this building, which increased the electrical load. And remember, it is thought that it is a short circuit that perhaps caused this fire, though the final answer will only come after the probe. Now, the deadly Lucknow fire has sparked a fierce political storm in Uttar Pradesh. The opposition launched a sharp attack on the Yogi government over the tragedy. SP leader claimed that the coaching institutes or these institutes were allowed to operate without adequate safety norms. He questioned how such facilities were permitted to flourish in the heart of the city, despite poor access routes and inadequate emergency preparedness. UP Congress Chief Ajay Rai echoed the criticism, accusing Yogi government of turning a blind eye to violations and failing to ensure accountability. The opposition is demanding a thorough probe and strict action against those responsible.
1: भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार की पूरी पूरी गलती है. आप सोचिए कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं है, बच्चे एग्जामिनेशन के लिए, नए एडमिशन्स के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए कोचिंग में जाते हैं. सवाल ये कि जब कोचिंग मानकों पे नहीं बने हुए तो मशरूम की तरह से मुख्यमंत्री के निवास से 2 किलोमीटर के रेडियस में सारे बड़े कोचिंग सेंटर्स बने हुए, वहाँ पे ना एंट्री एग्जिट का कोई जगह है, ना वहाँ पर अग्निशमन के दस्ते जा सकते हैं.
2: बहुत भीषण, बहुत दर्दनाक ये हादसा हुआ है जिसमें 15 युवाओं की मौत हो गई है और काफ़ी लोग उसमें घायल हैं. ये केवल हादसा नहीं है, ये सरकार और प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है जिसके कारण से इतना दर्दनाक ये हादसा हुआ है. वो आवासीय क्षेत्र था, उस आवासीय क्षेत्र को कमर्शियल करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बहुत पैसा लिया और ये देखा नहीं कि वहाँ पर आग बुझाने के लिए कोई फायर सेफ्टी सिस्टम लगा है कि नहीं. वहाँ पर केवल एक ही गेट था, अगर 2 गेट होते तो बाहर लोग निकल गए होते. उसमें कुछ लोग जल के मरे हैं, बाकी लोग आग से जब भाग करके बाथरूम में गए और छिप गए तो धुएं से, दम घुटने से उन लोगों की मौत हो गई.
3: आज इसके पहले भी एक होटल में आग लगी थी, वहाँ कार्रवाई हुई पर उसका नतीजा क्या हुआ और उसमें उनका पूरा होटल सीज किया गया, तोड़फोड़. आज वो फिर देखिए एक लाइब्रेरी में आग लगी जिसमें 6 बच्चे मर गए, जिंदा 11 बढ़ गए, 11 लोग मर गए. आप बताइए क्या है, इसे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से सरकार आंख मूंद कर बैठी है और गलत जो इस तरह की संस्थाएं चल रही हैं उनको पूरी तरीके से सरकार का प्रोटेक्शन है और सरकार उनका सहयोग कर रही है.
4: बहुत बहुत दुखद बात. देखिए हमारे देश में सेफ्टी कोड्स वगैरह के एनफोर्समेंट ठीक तरह नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा. दिल्ली में आपको याद है 2 हफ्ते पहले यही हुआ था. वेरी सैड. ओम शांति पे हम पास.
0: In other news now, the fight for the real Trinamool Congress intensifies in West Bengal. Mamata Banerjee has now reconstituted the TMC Working Committee and she has been appointed as the chief once again, and list has been sent to the Election Commission of India. Now, this comes after the rebel TMC MLAs and leaders held a special session and removed Mamata Banerjee, the founder of the party, as the chairperson of its newly constituted National Working Committee, replacing her with Arup Roy. Not only this, Mamata Banerjee faces another jolt as well. Former Kolkata mayor and senior TMC leader Firhad Hakim and Arup Biswas, both considered close aides of Mamata Banerjee, were seen attending the meeting held by the rebel camp.
5: इसका तो उत्तर जनता जनार्दन ने दे दिया. हमारी देश का डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन ही फाइनल वर्ड होता है, इसलिए संविधान में फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है. जनता ने उनका उत्तर दे दिया, सबक सिखा दिया. वो ज्यादा बोलने का मुझे जरूरत नहीं.
6: एक्चुअली यहाँ पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन का आयोजन किया गया था, उस स्पेशल सेशन में डेलीगेट लोग यूनानिमसली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी और NWC इसका चुनाव हुआ है, गठन हुआ है. श्री अरूप राय जो पहला दिन से 1998 का पहला दिन से जो 138 एविडेविट हुआ था हर में अरूप राय जी का सिग्नेचर है। तो अरूप राय जी हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुने गए हैं। इसके सिवाय अरूप राय छोड़ के और 29 लोग टोटल 30 लोगों को लेकर एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ है।
7: कालीघाट के मीटिंग में कितना लोग था और आज का मीटिंग में कितना लोग है ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स, ये तो अभी सिर्फ MLA MP ऐसा कुछ नहीं है, ये पार्टी का डिफरेंट लेयर का जो लीडर्स है, जो वर्कर्स है, सारे के सारे आज एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप अगर समय के साथ साथ आपको परिमार्जन नहीं करते हैं तो आपको ऐसे हालत फेस करना पड़ेगा। जो भी पार्टी आगे सामने बढ़ा है वो समय के साथ उसको अपग्रेड किया। जैसे आपका जो फ़ोन है, एक ज़माने में आप बटन फ़ोन यूज़ करते थे, फिर स्मार्टफोन यूज़ करते थे, तब 2G टेक्नोलॉजी था, फिर 3G आया, 4G आया, अभी 5G यूज़ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको खुद को अपग्रेड करना चाहिए।
8: See, the team of rebel MPs have got the numbers. Let's be honest about it. In electoral politics, numbers are everything. However, they have constituted the National Working Committee, and Mamata Banerjee has also fired a list and her official communicate to the Election Commission that this is her National Working Committee where she is the chairperson. But you also have to understand something. This is out of the Maharashtra playbook, the Shinde and Uddhav playbook. That this is what has been followed in Bengal. But there is also one very small factor which nobody is considering here, that is the people's factor.
9: हमारा पार्टी को नाम यूज करके कुछ लोग कुछ कर रहे हैं एक होटल में, ये इलीगल है, उनका कोई अथॉरिटी या राइट नहीं है। हम लोग ये समझते हैं तृणमूल कांग्रेस मीन्स ममता बनर्जी और ममता बनर्जी मीन्स तृणमूल कांग्रेस। ममता दीदी का एक लॉन्ग स्ट्रगल के ऊपर खड़ा होकर ये तृणमूल कांग्रेस है और हम लोग कोई काउंसिलर, कोई MLA, कोई MP, कोई मिनिस्टर, ये सब हो गया है। अभी एक कॉन्स्पिरेसी में आकर कुछ लोग बेईमानी कर रहा है, सरासर बेईमानी कर रहा है और कुछ लोगों का ऊपर दबाव डाल के पावर मिसयूज करके उसके साथ बैठने के लिए वो लोग एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है।
0: All right, so trouble mounting there for Mamata Banerjee. Moving on now to the Ram Mandir donation row, which has now reached the Supreme Court. A PIL has been filed seeking a CBI-led SIT probe into allegations of financial irregularities linked to the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. The petitioners have not only sought registration of an FIR, but have also called for an independent, time-bound investigation by a specialized agency. Remember, so far, the UP government has also constituted an SIT. Vijay Vishwas Pant, commissioner of the Lucknow division, along with two members, submitted the preliminary report regarding the alleged theft of donations in the Ayodhya case. The opposition has stepped up its attack on the BJP government, the Yogi government there, questioning the impartiality of the probe. The BJP, on the other hand, insists that anyone found guilty will face the strictest action.
10: सरकार ने SIT जरूर बनाई है, लेकिन क्या SIT को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। CCTV के फुटेज गायब है, जो खबरें आ रही हैं आप ही लोग दिखा रहे हो, ये साबित कर दिया है धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है और सनातन परंपरा को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाना कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी।
11: ये एक राम मंदिर कट्टादमेलो कूड़ा अल्लिंद कळतन आगता इदे 5000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೋಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂಜಾರಿನೇ ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ನಾಮ ಜಪೋ ಪರಾಯ ಮಾಲ್ ಅಪ್ನಾ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ರೂಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ದೇವರ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ, ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಿದೆ? ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ.
12: भगवान के घर चोरी हुई है, भगवान के घर की चोरी और डकैती जो है निश्चित रूप से खुलनी चाहिए, लोगों की आस्था के ऊपर चोट है। ये सरकार की माया है, ये सरकार जाने ये क्या कर रहे हैं और SIT के क्या मायने हैं बिना FIR के, उसका कानूनी पहलू क्या है, ये तो वही बता सकते हैं, इससे पहले कोई नहीं बता सकता है।
13: वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके दल के इशारे पर कार्यसेवकों पर गोली चली थी कि जिनके पास कोई सबूत है तो तथ्यों के साथ में वो SIT के सामने प्रस्तुत करें। उनके आरोप पर कोई आपत्ति नहीं, आरोप लगाना उनका, अगर उनके पास कुछ है तो वो लगा सकते हैं, लेकिन अगर लगा रहे हैं तो जो कुछ उनके पास आरोप के पीछे तथ्य है उसको प्रस्तुत करना चाहिए।
0: All right, with that, time for us to slip into a short break. We'll be back with all the top news stories.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: Today we are asking the question, what does India think about the political direction in which the country is going? 62% of TMC voters do want Mamata Banerjee to continue. 65.8% of BJP voters think Shubhendu Adhikari has done a fantastic job.
4: And a lot will depend on how Shubhendu Adhikari ensures that neither those people come into the BJP's rank and file.
5: Mamata Banerjee's politics in Bengal, at least in Bengal, is really in a dangerous curve.
6: That we are moving towards Sonar Bangla, The industries which left today, Trinamool to nahi pata, but Amul will come. Trinamool ke badle Amul aayega, Tata aayega. Tata nahi karenge industry ko.
3: Now the allegation against the BJP is, you've turned it into a witch hunt.
7: They don't have bharosa on the ex-chief minister, on Mamata Banerjee.
2: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea, witnessed history being made in global capitals and conflict zones,
8: this location from Tel Aviv,
2: brought clarity right now, right to complex issues of national security and international affairs.
9: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
10: The Ayatollah Khamenei is gone.
11: There has been a missile attack right behind you,
12: and we need to rush into a shelter.
13: Heading there.
14: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
2: And now, Aditya Raj Gaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
15: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
16: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
17: अरे मेरे राजा,
18: सबका राजा आर प्योर मसाला।
19: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
20: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
21: Higher end, check the audio.
19: Let's do it. Let's start.
22: Breaking stories, we're jumping straight into it.
19: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
23: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
19: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
24: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
23: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
19: The line of control, Shiv Arun, NDTV.
25: The news.
26: Ayush, since when do we do scripts?
25: Fair point.
26: Picture this. The biggest stage. Floodlights.
25: Wow.
26: 4K. The works.
25: Where's the hook?
26: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
25: Where's the hook?
26: Think about this. Front page advertisements and hoardings.
25: Bro, where's the hook?
26: Cross-platform, digital first, virality.
25: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You've got to be real in a world of reels. You've got to be original in a world where everything seems generated.
26: That's it. That's what we're looking for.
25: The best campaigns.
26: The hottest trends.
25: The smartest brand moves on our new show.
26: But wait, what do we call it?
25: The hook.
2: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
3: First, our breaking updates from Lucknow. A special investigation team.
27: नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। नीट परीक्षाओं को लेकर अभी काफी विवाद हुआ, लेकिन 21 जून को जब नीट की दोबारा परीक्षा हुई तो देश भर में लाखों छात्रों ने इस परीक्षा को दिया। सरकार ने अपनी ओर से पूरे इंतजाम भी किए, पर लीक होने से लेकर दोबारा परीक्षा कराने तक सरकार के अनुभव क्या रहे, क्या तैयारियां रही और जो आरोप लगे हैं उन पर क्या सरकार का जवाब है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद है। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी पर। 21 जून को परीक्षा हुई, एक तरह से आपकी भी परीक्षा थी, आपके पूरे महकमे की, मंत्रालय की भी परीक्षा थी, छात्रों की थी, उनके अभिभावकों की थी, सबको परेशानी थी, मानसिक तनाव भी था कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि 21 को आपने राहत की सांस ली होगी।
0: मैं सबसे पहले इस परीक्षा में परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को, सभी छात्राओं को, सभी विद्यार्थियों को और सारे उनके अभिभावकों को और इस परीक्षा प्रबंधन में लगे हुए सारे प्राध्यापक, उसकी बाहरी प्रबंधन में लगे हुए सभी जिला की अधिकारी, जिला की टीम, राज्य सरकारों की, देश की सभी राज्य सरकारों की नेतृत्व और भारत सरकार की अनेक विभागों की जो दायित्व, जिसके पास जो दायित्व था, सारे विभागों को मैं शिक्षा विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। सभी की सामूहिक प्रयास से इस प्रकार की एक चुनौती को हमने पूरा किया है। बड़ी सफलता के साथ 21 तारीख को परीक्षा को पूरा किया गया है। 20 लाख विद्यार्थी अपीयर हुए, निर्भुल तरीके से परीक्षा हुआ है। पिछले दिनों में जो चुनौतियों को हमको सामना करना पड़ा था, ये सारे व्यवस्था, सारे दिक्कत इस बार ना आए, उसको डे वन से, जब हमने पिछले मई 15 को नया परीक्षा की तिथि घोषणा किया था, उसी दिन से, अगर इस प्रकार की परीक्षा के लिए एनटीए को लगभग 6 महीने की समय लगती है, क्वेश्चन पेपर तैयारी करने से लेके परीक्षा को ऑर्गेनाइज करना, तब तक लगभग 6 महीना लगता है। इस बार चुनौती था इस सारे विषय को हमको 38 डेज में पूरा करना। मैं एनटीए को भी बधाई देता हूँ, सभी को जोड़ते हुए, एक समन्वय करते हुए फुल प्रूफ परीक्षा इस बार हुई है। मैं इसके लिए देशवासियों की ओर से सारे स्टेक होल्डर्स को धन्यवाद देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। निश्चित रूप में हमारे देश में जो मेधावी विद्यार्थी है, ये सब अच्छे किए हैं परीक्षा में, सबके अच्छे नंबर आने वाले हैं। योग्यता के आधार पे ये सब आने वाले दिनों में विभिन्न चिकित्सा सेवा के, मेडिकल एजुकेशन के विभिन्न स्ट्रीम पे जाएं, उनको मेरे को अनेक अनेक बधाई और शुभेच्छा है।
27: लेकिन धर्मेंद्र जी, जो अनुभव रहा पिछले कुछ दिनों का, 3 मई से अगर लेकर अभी तक 21 जून तक की बात करें, तो कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्पेशली अगर हम 3 तारीख की बात करें, जो पेपर के कुछ पेपर्स क्वेश्चंस बाहर आए, लेकिन सरकार ने फैसला किया कि हम पूरी परीक्षाएं दोबारा कराएंगे। आपने CBI को भी जांच देने का फैसला किया, तो उसके बाद आपने क्या सीखा है कि जिसमें कि आप 21 तारीख का परीक्षा आप अच्छे से करवा पाए? हमने लॉजिस्टिक्स की बात देखी कि जिसमें लॉजिस्टिक्स से लेकर के सिक्योरिटी से लेकर के पेपर सेटिंग, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन इस बार रखी गई है।
0: देखिए, 3 तारीख की परीक्षा के दिन और उसके उपरांत 1 सप्ताह की जो लर्निंग हुई हमारा, ये हम सभी के लिए बहुत आँखों को खोलने वाला विषय अनुभव था। पिछले दिनों में जो अनुभव हुई, इसको एक बेंचमार्क मानते हुए, चैलेंज की एक टारगेट मानते हुए, उसको कैसे अंडू करना, उसको कैसे पार करना, उस हर्डल्स को कैसे पार करना, क्वेश्चन पेपर सेटिंग से लेकर, इस बार तो सबसे जो नहीं होना चाहिए था 3 तारीख की परीक्षा के समय हुई, जिनको एनटीए ने भरोसा किया था क्वेश्चन बनाने के लिए, जो चंद शिक्षक हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा स्थान में रहने वाले लोग हैं, लाखों करोड़ विद्यार्थियों की जिंदगी की माँ पिता से ज़्यादा प्रेरक उसकी शिक्षक रहा है, ऐसे कुछ चंद गलत उद्देश्य रखने वाले शिक्षक रक्षक के दायित्व वाले लोग भक्षक बन गए, भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, मंद उद्देश्य उनकी रहा, बच्चों के भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। CBI को आपने नाम दिया, CBI उसकी तह तक जा रही है, सबको पकड़ा गया है, उसको कैसे लास्ट माइल तक, उसको कहां कहां कौन कौन जुड़े थे, सब CBI उसके काम पे लगा है, उसकी इंक्वायरी CBI ठीक समय में कर लेगा, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी इस बार, इसलिए डे वन से हम लोगों ने 15 तारीख को जब हमने अनाउंसमेंट किया परीक्षा की, जब 38 दिन हमारे हाथ में थे, पहला चुनौती था कि निर्भुल तरीके से प्रश्न पत्र बने। प्रश्न पत्र के लिए हमने कई आयाम आरंभ किया, अच्छे अच्छे शिक्षकों को, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, IITs, NITs, इस प्रकार की संस्थाओं की चुनिंदे गुणात्मक और छात्र प्रो स्टूडेंट टीचर्स को इकट्ठा करके हम लोगों ने प्रश्न पत्र बनाए। प्रश्न पत्र की बास्केट को बड़ा किया गया, जिसे पता ना चले ट्रांसलेशन होते हुए कौन सी प्रश्न जाएगा, ये NTA की लीडरशिप के हाथ में रहा। एक पारदर्शी तरीके से, मैं एक बार खुद जहाँ प्रश्न पत्र बन रहा था उसको एक बार मैं परिदर्शन करने के लिए गया, मेरे को भी जो उस प्रकार की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में जाना पड़ा, मेरा विश्वास हुआ कि इस बार तो निर्भुल तरीके से प्रश्न पत्र बनाया जा रहा है। एनटीए ने उसके बारे में विशेष ध्यान दिया था, सीएपीएफ की निगरानी में हुई, सारे टेलीफोन्स इंटरनेट से बाहर रख के जो टीचर्स, मैं टीचर्स को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने उस प्रकार की डिसिप्लिन को स्वीकार किया, वो सब आइसोलेशन में रहे, प्रश्न पत्र
27: बनाए, जैसे कि बजट हमारा बनता है
0: जैसे
27: वैसे गोपनीयता इस बार ही प्रश्न पत्र के लिए।
0: इस बार हम उस प्रकार की उच्च स्तर की विश्वसनीयता गोपनीयता हमने बरता था, उसके कारण अच्छे प्रश्न भी बने, फिर उसको मॉडरेट किया गया, उसको ठीक से सटीक ट्रांसलेशन हो और एनसीईआरटी की किताब के आधार हो, कभी कभी इस प्रकार की भी विसंगति देखने को पड़ता है। ये सारे छोटे छोटे चीज़ों को अच्छे क्वेश्चन बनने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस के उत्तर बहुआयामी हो जाता है, ये भी सही वो भी सही, इसलिए विद्यार्थी दुविधा में रहता है, क्वेश्चन को बांधते तक उत्तर ड्रॉप करना पड़ता है। इस बार ऐसे ना हो, इस सारे को इस प्रकार के एकेडमिक चैलेंज रहता है, इससे सब ना हो उसको भी ध्यान दिया गया है। इसकी जो कमांड चेन होती थी प्रश्न पत्र बनने के बाद छपने के लिए जाता था, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन में जाके पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से वो नीचे जिले में जाता था, फिर बैंकों में जाता था, फिर परीक्षा के दिन सेंटर्स में जाता था, सेंटर से फिर लौट के एनटीए के हेडक्वार्टर तक आता है। ये पूरा कमांड चेन में जीरो लीकेज हो, वाटर टाइट हो, इसके सारे व्यवस्था किया गया,
27: कंट्रोल रूम बनाकर के मॉनिटरिंग भी की जा रही
0: है, कई मल्टी लेयर मॉनिटरिंग हुई, राज्यों की मदद लिया गया, सीएपीएफ की मदद लिया गया। इस बार जैसे भी चुनौती था कि भाई जून महीने में बारिश भी आ जाएगा, इसको ध्यान में रखते नॉर्मल रूट में ना भेजते हुए हम लोगों ने एयरफोर्स की मदद लिया, एयरफोर्स ने भी भरपूर मदद किया, एयरफोर्स के माध्यम से हमने उनको देश के अनेकों सुदूर स्थान तक एकदम व्यवस्थित पहुंचा पाए। फिर एयरफोर्स उस सारे 15,000 बक्सेस बने, दो सेट क्वेश्चंस बनते हैं, 15,000 बक्सेस देश की 550 शहरों में जाता है, फिर आगे 5,400 से ज़्यादा केंद्र में जाता है। ये सारे बक्सेस निर्भुल तरीके से जाए, सुरक्षित जाए। मैं फिर एक बार मेरे नीचे जो फील्ड मार्शल जिनको मैं कहूँगा, फील्ड कमांड जो था जिन लोगों के पास, उन्होंने बखूबी उसको दायित्व निभाया। मैं तो उस दिन प्रत्यक्ष सुबह से क्या, उसकी दो दिन पहले आप लोगों के माध्यम से मॉक ड्रिल को भी देश ने देखा, इसको कैसे, किसी ने कहा कि इसको सारे चुनौती क्या है अखिलेश जी, हमारी देश में कुछ दहशतगर्द रहते हैं जो सारे व्यवस्था को तोड़ने की पैरेलल प्रयास भी करते हैं। किसने कहा कि भाई देखो हमारे ये तो क्वेश्चन पेपर आ ही गया, तुरंत हमने निगरानी करके देखा कि व्यवस्था हमारी फुल प्रूफ है, वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा है जिस कंट्रोल रूम पे, जिसके बारे में आप कह रहे थे, बैंकों के ऊपर देखो जो पोस्टल डिपार्टमेंट की कस्टडी में आया, प्रिंटिंग प्रेस पे सीसीटीवी की निगरानी रही, ये सब रिकॉर्डेड है। पोस्टल डिपार्टमेंट की कस्टडी में जब

0: आया उसकी सारे ट्रांसपोर्टेशन पोस्टल डिपार्टमेंट और एयरफोर्स की निगरानी में हुई। जिले में जब आया जिला प्रशासन की कोई जिम्मेवार अधिकारी उसकी मैजिस्ट्रियल कैपेसिटी के अंदर उसको लीड करके लेके गया। बैंकों के अंदर सीसीटीवी रही, परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी रही, सब जगह पे सर्विलांस की तंदुरुस्त व्यवस्था किया गया है। इसके कारण इस बार अनेक देखो दहशतगर्द उसको तोड़ने की कई बार इस बार भी प्रयास किया लेकिन सारे कोशिश नाकाम रहा, चीज़ों को सुचारू रूप में संचालित कर लिया गया।
1: तो आपने जो कहा कि पारदर्शिता बनाकर रखने की कोशिश की गई, पवित्रता परीक्षा की वो बनाए रखी गई, अब जो 21 जून की परीक्षा के लिए सारी व्यवस्था की गई, आगे के लिए क्या हम अपेक्षा करें? क्योंकि कई सारा दबाव है, मांग भी देश भर में हो रही है कि परीक्षाओं की जो पवित्रता है वो सुनिश्चित की जाए, आगे से इस तरह की घटना ना हो कि पेपर लीक हो। पेपर लीक का आप जानते हैं कि एक लंबा इतिहास रहा है, यूपीए सरकार के वक्त भी पेपर लीक हुए हैं, आगे ना हो इसके लिए क्या कमेटी है? कमेटी ने अपनी सिफारिशें भी दी है, ये भी कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए इसके लिए, तो नीट के लिए, तो क्या आगे आप इसके लिए योजना बना रहे हैं?
0: देखिए भारत एक नौजवानों की देश है, भारत एक यंगस्टर्स की देश है, यहाँ नौजवानों की मेधावी अधिकार की मेधावी क्षमता के आधार पर, उनकी मेरिटियस क्षमता के आधार पर उनकी एस्पिरेशन आसमान छू रहे। उस समय में परीक्षा हो या इंटरव्यू हो, ये जितना पारदर्शी हो ये हमारी दायित्व बनता है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, उसकी कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये हमारी दायित्व है, हम उसको कर ही रहे, उसको और कैसे निर्भुल कर इसके निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। इस बार हमारी NTA के परव्यू में, NTA के दायित्व में लगभग 1 करोड़ विद्यार्थियों की एंट्रेंस टेस्ट की हम परीक्षा करते हैं, उच्च शिक्षा के लिए, कहीं इंजीनियरिंग के लिए, कहीं एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए, कहीं लॉ कोर्सेज के लिए, कहीं UGC नेट के लिए, ऐसे परीक्षा करते हैं, नीट भी करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा है, ये हमारी दायित्व तो उन्होंने हमको दिया है, हमारे इसके क्लाइंट हम, स्वास्थ्य विभाग हमारा क्लाइंट है। उन्होंने एक पद्धति अपनाया था ये पेन एंड पेपर हो, अभी लगभग NTA के अंदर सभी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो चुका है, CBT हो चुका है, उसकी भी एक चुनौती है उसकी भी एक अलग चुनौती है, लेकिन अंतर्गत जिसके कारण राधाकृष्ण कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था कि पेन एंड पेपर ज़्यादा चुनौती है, थोड़ा ज़्यादा उसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाता है, एक ही दिन में होता है, 5400 केंद्र में होता है, इन्विजिलेटर्स रहते हैं, कई प्रकार की उसमें से तरह तरह की हर्डल्स रहता है, इसके बजाय इसको थोड़ा स्टागर करते हुए जेई मेन में लगभग 16-17 लाख विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। अभी UGC नेट परीक्षा चल रहा है, उसमें लगभग 10 लाख विद्यार्थी परीक्षा देने, ये सब 7 से 10 दिन तक स्टैगर होके होगा। देश में कंप्यूटर टर्मिनल की एक निर्दिष्ट नंबर है,
1: इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू नहीं है इसको,
0: इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी सरकार हम प्लान कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी, विशेष करके सरकारी संस्थाओं में, ये भी एक चुनौती है कि जो CBT की ओर हम बढ़ेंगे, हमको ध्यान देना पड़ेगा परीक्षा केंद्र कहाँ हो रहा है, सरकारी व्यवस्था में हो रहा है या निजी संस्थानों में हो रहा है, इसको धीरे धीरे हम कैसे टेम्पर प्रूफ करें, लीकेज प्रूफ करें CBT को भी, ये हमारी दायित्व है। ये सरकारी संस्थानों में होगी, सरकारी व्यवस्था में होगी तो उसकी उत्तरदायित्व ज़्यादा बनेगी। अगले बार हम नीट जब करेंगे, हमने स्वास्थ्य विभाग से चर्चा किया है, वो भी उसमें से इन प्रिंसिपल सहमत हो चुके हैं, अगले साल इसको CBT की ओर ले आया जाएगा। मैं अभी भी आपके माध्यम से देश के विद्यार्थियों को अपील करना चाहता हूँ, आपकी अगले साल जो नीट की तैयारी कर रहे हैं इनको CBT की ओर मन बनानी पड़ेगी। हम व्यवस्था घोषणा कर चुके हैं, हम तैयारी भी करना शुरू कर दिए हैं, केवल CBT होने से नहीं होगा, उसकी मूल व्यवस्था, क्योंकि उसमें भी अनेक चुनौती रहेगा, क्योंकि आज बदलते हुए परिस्थिति में जो साइबर वॉल बन चुका है, वर्चुअल वॉल बन चुका है, इसकी भी चुनौती अनेक है। इस बार आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब हमने CBSE की रिवैल्यूएशन की पोर्टल खोला, उसमें
1: हमला किया,
0: 2 घंटे के अंदर 38 लाख इन्वेजन हुए,
1: साइबर अटैक हुआ।
0: ये सब नई नई चुनौती समाज,
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई लोगों ने फर्जी एडमिट कार्ड बना लिए, देखो पेपर्स बना लिए,
0: सारे प्रकार की, देखो जो जिन दो दहशतगर्द है ना समाज में, जिनको देश की व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए जो लोगों के मन में एक षड्यंत्र रहता है, ये व्यवस्था को तोड़ के हमारे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, ये सब उसकी तथ्य और प्रमाण हम आपके सामने रख रहे हैं, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। और हमारे देश की जो इंजीनियरिंग कैपेसिटी है,

0: टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी पर्याप्त है, इसको एक नई रूप में देखने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें उसकी व्यापक समाज में स्टेक होल्डर कंसल्टेंसी करनी पड़ेगी, अनेक एक्सपर्ट्स की। इस बीच में मैंने देखा बहुत सारे अच्छे सुझाव ओपेड के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, और इन पर्सन अनेक एक्सपर्ट्स हमको जो मिले, हम भी चाहे इन प्रकार के लोगों को मिले। आखिर एक सामूहिक प्रयास से देश में एक नई परीक्षा प्रणाली को अपनाना पड़ेगा। इसमें अनेक अच्छे परामर्श आए हैं। राधाकृष्णन कमेटी ने एक प्राइमरी रिकमेंडेशन किया है, हम अपेक्षा रखेंगे राधाकृष्णन कमेटी से इसको और इस कंसल्टेंसी को थोड़ा और व्यापक करें।
1: आमूलचूल परिवर्तन हम मान सकते हैं अगली बार से होगा?
0: निश्चित रूप में हम इस बार से काम पे लग गए हैं, इसको आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। देश की दायित्व है 21वीं सदी में हमारी बच्चों को सुरक्षित परीक्षा दिलवाना, ये हमारी दायित्व है।
1: हम फिर से 3 मई पर आते हैं। धर्मेंद्र जी, आपने कहा कि रक्षक ही भक्षक बन गए, जो पेपर सेटर्स थे उनमें से कुछ लोगों ने क्वेश्चंस जो है वो लीक कर दिए, लेकिन एक दूसरा एंगल भी है, वो है कोचिंग सेंटर्स का। ऐसा माना गया है कि इसमें केवल उनकी ही उनको ही दोषी ठहराना ठीक नहीं, बल्कि कोचिंग माफिया, जो देश माफिया शब्द का इसलिए कर रहा हूँ यूज़ क्योंकि इस पर ही बहस चल रही है देश के अंदर, कि वो जिस तरह से उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो जिस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है?
0: देखो, निश्चित रूप में ये आपने एक सही विषय को उठाया है। इस विषय को समाज खुल के एक बार चर्चा करनी चाहिए, सभी स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, हमारे नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी भी जेई एडवांस को परीक्षा को पास करते हैं, नीट की परीक्षा को पास करते हैं। देश के कई राज्यों में इसके अनुभव है कि सामान्य घर के बच्चे बिना कोचिंग को भी जाते हुए इसको कर सकते हैं। हमें कई आयामों को ध्यान देना पड़ेगा। एक तो प्रश्न सरल हो, प्रश्न जो पढ़ाई कर, स्टेट बोर्ड इस बार जेई में अनेक स्टेट बोर्ड के बच्चों को भी उपलब्धि हुई है।
1: आपने जो कहा कि एनसीईआरटी के हिसाब से इस बार प्रश्न आपने रखे जून 2021 में,
0: देखो एनसीईआरटी के जून 2021 के लिए हमने एनसीईआरटी को फोकस किया। हमने जो परीक्षा क्वेश्चन सेटर रहे उनको कहा कि भाई एनसीईआरटी की किताब को राज्य भी मानता है, इसी के इर्द गिर्द रखो। हम उसको तो आने वाले दिनों में और व्यापक करना चाहते हैं। एससीईआरटी जिस जिस राज्य की पाठ्य पुस्तक है और एनसीईआरटी दोनों को मिला के, क्योंकि बच्चों की तो अधिकार स्टेट बोर्ड की और सीबीएसई को सबके अधिकार है। हमारे देश के ग्रामीण विद्यार्थी, गरीब विद्यार्थी, पिछड़े इलाका का विद्यार्थी भी, उसकी मेधावी क्षमता सिर्फ कष्ट प्रश्न से नहीं होती है। प्रश्न को ही ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चंस क्या बना है, उसकी पढ़ी हुई बातों पे उसके एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाए, उसके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाए। इसलिए कष्ट क्वेश्चन की कोई उसकी समाधान नहीं है। हमें उसको व्यापकता के साथ क्वेश्चन सेटिंग से लेके आगे पढ़ाई की व्यवस्था को, हमारी दायित्व, हम उसको हमारे इतने राज्य सरकार और भारत सरकार उसको ठीक करेंगे। ये मेरी जगह सामाजिक चर्चा हो। कुछ लोग जानबूझ के शिक्षा को एक डीरेल करने के लिए, जिस प्रकार की 3 मई के अनुभव हुआ, जिन दहशतगर्दों ने, वो जो भी कोई हो, वो कोचिंग सेंटर वाले हो या शिक्षा की माफिया हो, भारत सरकार राज्य सरकार इसमें सहमत है, किसी की भी राज्य सरकार हो, किसी भी पार्टी का। लेकिन मेरा जो पिछले 1 महीने का अनुभव हुआ, मैंने सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों जी से बात किया, सारे राज्यों के शिक्षा अधिकारियों के साथ बात किया, सारे राज्यों की जो साइबर सिक्योरिटी दिखने वाले अधिकारियों से बात किया, हम सब उसमें एकमत है कि दहशतगर्द को अपने घुटने पर लाना पड़ेगा। कितना भी ताकतवर हो, उसको घुटने पर लाना पड़ेगा, नहीं तो हम देश की बच्चों के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। कोई हमको आरोप प्रत्यारोप कर सकता है, प्रजातंत्र है, किसी को आरोप करने में हमें कोई रोक नहीं करते हैं, लेकिन मूल प्रश्न एक सामाजिक भीतर खड़ा करना पड़ेगा। पढ़ाई पे हमारी गुणात्मक भूमिका बढ़ानी पड़ेगी, राज्यों को बढ़ानी पड़ेगी, केंद्र सरकार अपने दायित्व निभाएगी। उसके साथ साथ हम इतना पढ़ाई को सरल करें, प्रश्न पत्र को इतना आर्टिकुलेट करें, उसके लिए विद्यार्थियों को पढ़ाई पे, जो स्कूल की पढ़ाई पे वो पर्याप्त हो। आज आफ्टर ऑल CBSE तो अपना परीक्षा करा ही रहा ना, स्टेट बोर्ड तो अपना परीक्षा करा ही रहा ना, अपना क्वालिटेटिव मेरिट लिस्ट तो, मैं कई सालों से इसके एक समीक्षा करता हूँ, तो जेई या नीट की उत्तीर्ण परीक्षार्थी अपने अपने बोर्ड में कैसे करते हैं, लगभग एक ही प्रकार के अच्छे मेधावी विद्यार्थी। हम परीक्षा के नाम पे, एंट्रेंस के नाम पे उसके ऊपर बोझ ना बढ़ाए, ये हमारी दायित्व है, शिक्षा शिक्षाविदों की दायित्व है और व्यवस्थापकों की दायित्व है।
1: जो कोचिंग की बात हमने की तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि 30 लाख 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए कोई गरीब परिवार तो नहीं दे सकता क्वेश्चंस लेने के लिए, इसके पीछे तो संगठित कोई ना कोई एक गिरोह काम कर रहा है।
0: कई विषय इस बार ध्यान में आई है, इस बार मैं आपको अखिलेश जी आश्वस्त करता हूँ, CBI अपने काम बढ़िया कर रहा है, हम इस बार अंत तक पहुंच चुके हैं। CBI की जितना जानकारी CBI से मिल पा रहे वो फाइनल रिपोर्ट अपने कोर्ट के सामने रखेंगे चार्जशीट देते हुए। इनको ना केवल उनके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई होगी, इस जो लोग जो शिक्षक और उनसे जुड़े हुए जो संस्थाएं, ये सब लोगों की एक उत्तरदायित्व शिक्षकों के माध्यम से NTA के साथ था, उनके ऊपर सिविल केसेस भी लगाया जाएगा। CBI तो क्रिमिनल केस कर ही रहा है, हमने NTA को से अपेक्षा रखा है कि आप उसकी जो एग्रीमेंट उसके साथ था उसकी संपत्ति को जब्त कर लो। समाज में दहशतगर्दों को एक आदर्श डर पैदा होनी चाहिए उनके मन में, और उनके पीछे जो ताकत है लाखों करोड़ों रुपया जो खर्चा करके क्वेश्चंस को खरीदना चाहते हैं, क्वेश्चन सेटर्स की पवित्रता को भ्रष्ट करना चाहते, उन तक इस बार भी तार पहुंचेगी। कुछ लोग पहुंचे हैं कुछ राज्यों में इस प्रकार की, जहां तार वहां तक उस प्रकार की वर्ग तक लातूर में पहुंची है, इसकी तार CBI देश भर में ढूंढ रहा है। कुछ विषय इस बार परीक्षा के समय में और एक दो जगह पे ध्यान में आई है। मैं सभी लोगों को, मैं मेरे को प्रशासन की और इंक्वायरिंग एजेंसियों के संज्ञान में सब है, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा।
1: आपने कहा कि लोकतंत्र है तो आरोप प्रत्यारोप तो होंगे, लेकिन हमने देखा कि जो लोकसभा विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन न केवल कोटा गए बल्कि कह रहे हैं कि छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए, उनके हक के लिए पूरे देश में NSUI और जो उनका छात्र संगठन है वो प्रदर्शन करेगा। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो देश की शिक्षा प्रणाली वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।
0: देखिए, मैं राहुल गांधी जी का उस प्रकार की जो रवैया रहा है, मैं सच में बहुत दुखी हूँ कि देश की हमारा इतना बड़ा पुरानी प्रजातंत्र है। मैं मेरे सामाजिक जीवन में मैं राजनीतिक शास्त्र का एक मुख्य विद्यार्थी हूँ, मैं उसको जब मैं बचपन में कॉलेज में था तब उसको मैं अभ्यास करता था। मैं जब जनप्रतिनिधि बना, अब जब मैं एक भूमिका में हूँ, मैं अपना जिम्मेवारी निभाते हुए चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। देश में प्रजातंत्र में सत्ता और विपक्ष अपना अपना दायित्व निभाते हैं। सत्ता को आलोचना करना, सत्ता को प्रश्न उठाना, ये विपक्ष की दायित्व है, उसको हम स्वीकार भी करते हैं, उसमें से हम ठीक रहते हैं। केवल विपक्ष के नहीं, समाज की, मीडिया की, सोशल थॉट लीडर्स की, इन सब की, जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल, इन सब की परामर्श हमारे लिए पथ्य है। लेकिन सबकी एक मर्यादा है, सबकी एक दायित्व भी है। मर्यादा के आरोप लगाना आपके अधिकार है, आपकी दायित्व भी कुछ है। राहुल गांधी जी ने, मैं आपको दो घटना बताऊंगा, जिस प्रकार की उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी विशेष करके जो सारे हद को तोड़े। 21 को परीक्षा होगा, राहुल गांधी 3 दिन पहले जाते हैं कोटा में दहशतगर्द खड़ा करने के लिए, मेलोडी करते हैं, बच्चों के मन में भय पैदा कराते हैं। उनकी अपेक्षा था कि 21 की परीक्षा खराब हो जाए। उसे आगे जाके एक नागपुर की बच्चा अपने ही चॉइस से, अपने पिता जो टेक्नोलॉजी से ध्यान आ रहा है, अपने ही टेलीफोन से, अपने ही IP एड्रेस से, वो 3 बार कहा कि मेरे केंद्र
1: अबू धाबी
0: करो। उसकी जानकारी कहीं ना कहीं NTA को मिलता है। NTA चंद घंटों के अंदर खबर मिलने के बाद, मैंने उनको 20 तारीख को खबर मिली कि भाई, उनके पास 19 तारीख को खबर मिली कि भाई इस प्रकार की घटना नागपुर में आई है। उन्होंने चंद घंटों में, बच्चा या उसके पिताजी ने NTA को संपर्क नहीं किए थे, NTA ने प्रोएक्टिवली उनको संपर्क किया कि ऐसे ऐसे खबर आ रही कि आप नागपुर में देना चाहते हो, आपके केंद्र अबू धाबी में हो गया है। ये पता नहीं क्या उस समय कि भाई उन्होंने अप्लाई किया था कहाँ के लिए, उसको देखा नहीं, चलो ठीक है आप नागपुर में देना चाहते हो। इस संज्ञान लेते हुए जानकारी मिलने की चंद घंटों के अंदर उसको नागपुर पहुंचा दिया गया। उसकी दूसरे दिन उसकी पिताजी कहे कि मेरे इस प्रकार की अव्यवस्था हुआ। उसकी कुछ क्षण के बाद राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट आ गया कि ये तो बड़ा अन्याय हो गया है। फिर NTA ने जब सामने सारे चीज़ों को लाया, राहुल गांधी मुंह छुपाए घूम रहे, उसके ऊपर उनके कोई बयान नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जी को देश को बताना पड़ेगा उनकी जो 20 तारीख को देश की बच्चों को डराने का ट्वीट आया था, लंबा ट्वीट आया था, उस ट्वीट की जब समाधान, उसकी जो तथ्य आ गया कि उस

0: विद्यार्थी की पिताजी की टेलीफोन से ही तय हुआ था कि अबू धाबी के अंदर हो, तीन बार हुई थी। बच्चे के पास चार दिन पहले एडमिट कार्ड पहुंच चुका था जिसमें अबू धाबी लिखा गया था, उसकी चॉइस के कारण वो उस दिन नहीं बताया, परीक्षा की कुछ घंटों के पहले बताया। राहुल गांधी उस पर से स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट सिर्फ आलोचनात्मक नहीं था, डर पैदा करने वाला, व्यवस्था को तोड़ने वाला, व्यवस्था को उस्काने वाला, प्रोवोक करने वाला, जैसे अन्य विद्यार्थी मेंटल टेंशन पे आ जाए, उनकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट आए, ये इस प्रकार के अनुभव राहुल गांधी के साथ हुआ। जिस दिन परीक्षा हुआ उन्हीं की पार्टी के पॉलिटिकल रैली के कारण, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां थे आदरणीय खड़गे जी, मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष थे। मैंने टीवी में, आप लोगों की टीवी के माध्यम से देखा कांग्रेस पार्टी की किस प्रकार की बेहूदी तर्क आ रहा था कि बच्चे आप पहले क्यों नहीं गए, हमारा रैली तो होना तय था। राहुल गांधी जी आपकी तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी,
1: प्रधानमंत्री जी जो है वो आधे घंटे,
0: प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट में आके इंतजार किए कि भाई मैं बच्चों को कोई दिक्कत ना दूं, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा कारण जो उनकी वाहन चलते हुए बच्चों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, इसके दायित्व स्वयं प्रधानमंत्री लेते हैं, देश की जनता ने लिया, देश की जनता ने कोऑपरेट किया। उस दिन देश के अनेक स्थान के चित्र आए, कैसे कैसे कैसे किस प्रकार के विद्यार्थी जाके केंद्र में पहुंचे। उस समय में मैं दो घटना, ऐसा अनेक विषय आ सकता है लेकिन दो घटना में, राहुल गांधी जी को देश के सामने उसकी उत्तर देना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को उसकी उत्तर देना पड़ेगा। मैं उसमें कुछ पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, अगर आप एलओपी हो, आपकी एक भूमिका है, क्या बच्चों के साथ इस प्रकार के व्यवहार आप करोगे? आप देश में अव्यवस्था खड़ा करना चाहते हो, देश में अराजकता खड़ा करना चाहते हो। राहुल गांधी जी के मन में एक इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, गाली गुलज करना, असभ्य व्यवहार करना, और देश की व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो कटिबद्ध हो चुके हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे।
1: इसी से जुड़ा एक छोटा सा ये भी था, आपने कहा कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाए, बेंगलुरु की बात थी, मध्य प्रदेश में भी एक किस्सा आया जहाँ पर कि गरीब परिवार था, वो पिताजी लेके गए लेकिन कुछ देर से पहुंची बच्ची तो उसको एडमिशन नहीं मिला।
0: देखिए अखिलेश जी, एक बच्चों को 10 बजे से देश की चित्र सब आप लोगों के कैमरे के अंदर कैद है, सारे सीसीटीवी में कैद है बच्चे। मैं तो उस दिन सुबह से ही उसको मॉनिटरिंग कर रहा था हमारी कमांड सेंटर पे, और आप लोगों की टीवी के माध्यम से बच्चे पहुंच रहे थे सुबह सुबह। लेकिन हर एक विषय की एक डिसिप्लिन रहता है, 1:30 तक जो बच्चा पहुंचेगा उसको एंट्री दिया जाएगा, पर्याप्त तो समय था, 3-4 घंटा पहले लोग बच्चे पहुंच रहे थे, लाखों की संख्या में बच्चे पहुंचे। मैंने त्रिवेंद्रम की एक वीडियो देख रहा था, वहाँ गेट के सामने उस सेंटर की जो अधिकारी सब थे बच्चों को भगा रहे, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, ठीक 1:30 में गेट बंद होती है। देखो तो डिसिप्लिन होता है, इतने व्यवस्था ये नहीं होनी चाहिए, जो उन बच्चों को आ जानी चाहिए था। चित्र मैंने भी देखा, आज अभिभावक मेरे को भी कष्ट दिया, लेकिन अखिलेश जी एक डिसिप्लिन तो मानना ही पड़ेगा ना। लेकिन कुछ जगह पे तो प्रायोजित किया गया है ये बड़ा, लेकिन इस बार NTA ने उसकी सारे सुव्यवस्था किया। 80 से ज़्यादा विद्यार्थी जो किसी ना किसी शारीरिक चुनौती में रहे, इन सभी को, किसी की पैर टूटा है, किसी की एक्सीडेंट में कोई गुजरा है और कोई बेड पे है, सभी को NTA ने अपने से जाके संपर्क करके उसकी क्लिनिकली जो रिक्वायरमेंट है उसी एटमोस्फेयर बनाया उनको परीक्षा देने के।
1: सृष्टि दुबे का तो हमने देखा, आप माता पिता से आपने,
0: मेरे को सौभाग्य मिला इस प्रकार की एक बच्ची को, बच्ची जो परीक्षा, मैंने सुना कि वो बच्ची इस प्रकार की दिक्कत में है, उनके मैंने पेरेंट्स से बात किया, पेरेंट ने बताया कि हमारे जो डॉक्टर तो आशा छोड़ चुके थे, उस बच्ची पिछले बार परीक्षा दी थी, वो अपने ब्याच की टॉपर रही, सृष्टि कलकत्ता की बच्ची है, उसकी डॉक्टर ने उसको हिम्मत दिया, नहीं वो दे सकती हो, डॉक्टर सृष्टि के मन में जीत थी कि मैं परीक्षा दूंगी। इसमें से फिर उसकी माँ पिताजी संपर्क किए NTA को, NTA ने उनके लिए व्यवस्था किया, और मैं तो उस दिन बात किया, और माँ पिताजी की आत्मविश्वास और बच्ची की फोटो जिस ढंग से मैंने बाद में देखा, ये तो हमारे लिए एक प्रेरक व्यवसाय, अनेक कहानी अनेक उदाहरण हमारे सामने आई।
1: लेकिन धर्मेंद्र जी, कांग्रेस तो कह रही कि वो इसको लेकर के राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़ती रहेगी, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे राजनीति?
0: देखो ये राजनीतिक विषय है नहीं अखिलेश जी, परीक्षा ठीक हो, बच्चे अच्छे मन से परीक्षा दे, प्रश्न पत्र बच्चों की मेधावी शक्ति को परखने के लिए हो, उनको बाधक देने के लिए ना हो, ये अभी हमारे सामने प्रश्न है। और उसको कैसे निर्भुल करें, टेक्नोलॉजी को साथ कैसे जोड़े, और कैसे एक्सपर्ट्स की, कांग्रेस पार्टी के पास कोई सकारात्मक सुझाव देने के लिए है ही नहीं, अगर वो देंगे उनको

0: भी मैं स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हूँ। गाली गुलज असभ्यता मैं सह सकता हूँ, लेकिन बच्चों के ऊपर मेंटल टॉर्चर करना, उनको डराना के अलावा उनके पास कोई सुझाव नहीं है।
1: आपको लगता है कि बच्चों को राजनीति का हथियार बनाया गया?
0: देखो बच्चे बने ही नहीं, नहीं तो इतने बच्चे सब देश में सब उन्होंने करने का कोशिश किया। परीक्षा को मैं एक दो जिम्मेवार कांग्रेस नेता की इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे रुको दो तीन दिन, जब परीक्षा की असली चेहरा आएगा हम तब देखेंगे। तो आप चाहते थे कि परीक्षा गड़बड़ा जाए, अब गड़बड़ाने की मैंने उसको तोड़ने के काम पे लगे थे, उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, ये इसके आप ताक में बैठे थे। इनके मन में निराशा हुई 21 शाम को जब परीक्षा निर्भुल हो गई, जो हताशा में जा रहा है।
1: जो बच्चे भावनात्मक दबाव ले लेते हैं, कुछ घटनाएं हुई हैं कि बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं, उनका भी फोटोग्राफ लगा करके कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाने की कोशिश की है, तो इसको लेकर के आप क्या?
0: ये तो अत्यंत निंदनीय बात है। देखो जो बच्चों की जान चली गई इसके लिए हम भी जिम्मेवार है, हम उसको मैं कैंपस की दायित्व में हूँ, पिछले 5 साल में भारत की शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ। जब भी किसी कैंपस में कोई छोटे बालिका या बालक की जान चली जाती है, मैं खुद को कोसता हूँ कि क्या व्यवस्था हम चला रहे हैं कि बच्चे की जान देना पड़ रहा है। इसलिए कि व्यापक प्रश्न है, इस प्रकार की घटना ना हो ये सबसे दायित्व लेना पड़ेगा, समाज को दायित्व लेना पड़ेगा, शिक्षकों को दायित्व लेना पड़ेगा, परिवार को दायित्व लेना पड़ेगा, उस बच्चे की मनोबल को बढ़ाना पड़ेगा। इसको लेकर मैं राजनीति करूं और विशेष करके परीक्षा के 2-3 दिन पहले मैं सूची निकालूं, इससे घिनौना काम कुछ नहीं हो सकता है।
1: और यहीं से कुछ दूर जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के, उस बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है, जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं। जो लोग देश को तोड़ने वाले लोगों की नारा लगाते हैं उस जगह पे, ये सब आइडेंटिफाइड हो चुके, लोग है कौन, मुद्दा क्या है, क्यों करना चाहते हैं। ये कुछ लोगों को देश की प्रगति में भरोसा ही नहीं है। आज देखिए शिक्षा में इन दिनों में NEP इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, एक ढांचागत परिवर्तन की ओर हम जा रहे हैं, भारतीयता के आधार पर शिक्षा प्रणाली को बनाया जा रहा है। आज देश में लड़कियों का विशेष करके एजुकेशन में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, और उसमें भी भारत में स्टेम एजुकेशन में लड़कियों की पार्टिसिपेशन दुनिया की चंद देशों के अंदर भारत 3 के अंदर आ चुका है। भारत में इनोवेशन इंडेक्स में भारत की स्थान ऊपर की ओर जा रहा है। अभी अभी QS रैंकिंग की सूची आई है, 2014 तक देश में 10-11 इंस्टीट्यूशंस होते थे, आज 54 इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं। IIT दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूशन काफ़ी 100 की अंदर आने के निकट आ चुका है, 1-2 सालों में वो 100 की विश्व की 100 संस्थाओं में भारत की 4-5 संस्था आ जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी पहली बार 322 रैंक में ग्लोबली आ चुका है। भारत में अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की होनहार नौजवानों की इनोवेटर्स की चुनिंदे 120 डीप टेक्नोलॉजी को लेके फ्रांस गए थे, जब G7 में वो पार्टिसिपेट करने के लिए पेरिस पहुंचे, उसकी 2 दिन पहले उन्होंने समय निकाला, भारत की नई पीढ़ी की डीप टेक्नोलॉजी को ग्लोबल मार्केट में शोकेसिंग करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति जी को साथ में रखते हुए दुनिया भर की CEOs को बुलाया गया, फंड्स को बुलाया गया, VC को बुलाया गया, एक नई प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। आज हमारी प्रायोरिटी भारत के नौजवानों के ऊपर भरोसा करके शिक्षा को गति देना, वैश्विक आवश्यकता क्या है, भारत की आवश्यकता क्या है, नौजवानों की मन की आकांक्षा क्या है, उनकी मन कैसे ठीक रहे, उनकी स्पष्टता कैसे बढ़े, क्रिटिकल थिंकिंग की आधार पर पढ़ाई हो, ये आज हमारी प्रायोरिटी है। बाकी जिनको कुछ लोग इस प्रकार की प्रगति में जिनके हाथ में पीढ़ी दर पीढ़ी शासन रहा, जिस खानदान में जिस पार्टी को लंबे समय तक देश को सेवा करने का अवसर मिला, उन्होंने सेवा तो की नहीं, जिन्होंने उपभोग की राजनीति की, उन लोगों के मन में एक कुंठा है कि अच्छा कैसे हो सकता है, देश आगे कैसे बढ़ सकता है। इसलिए देश को नीचा करने का, मेरे राजनीति बचे रहे इसलिए देश को नीचा करने के काम पे वो लगे, कोई A टीम कर रहा है, कोई B टीम कर रहा है, प्रजातंत्र में इनको लोग पहचान रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका डायमंड जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू।

0: यहाँ पर आना जाना सब नॉर्मल था? क्या कुछ सस्पिशन था कि ये लोग कुछ करने वाले हैं, ऐसा कुछ लगा आपको?
1: वैसे तो कुछ नहीं लगा, ये रहने के लिए अभी 2 महीने होने को आया है, नया है, लेकिन इन लोग, वो लड़की इधर ही घर में बैठते थे, लड़का इधर उधर जाता आता, कभी दोनों आता जाता ऐसा करता था, रात को भी 10-11 बजे भी ऐसे जाता आता करता था।
0: ठीक है। और कल ये मर्डर होने के बाद या ऐसे इंसिडेंट होने के बाद ये लोग किस तरह निकले, यहाँ से कार लेके निकले या बाइक लेके निकले, आप बता सकते हैं कि कुछ नॉर्मल था उसके बाद?
1: ये मर्डर होने के बाद कैसा हुआ, वो ऊपर सीढ़ी से ऊपर टेरेस में चले गया, वो टेरेस से दूसरा बिल्डिंग जैन है उसमें, वो दोनों उधर दूसरा बिल्डिंग में जाके उसका बिल्डिंग से सीढ़ी से वो आउटसाइड वो बाहर निकल गया। okay. इधर नीचे वो आए ही नहीं, वो ऊपर से टेरेस से ऊपर दूसरा बिल्डिंग में जाके फिर वो उधर रास्ते में निकल के चले गए।
0: So as you say, this looks like an elaborate plan. Some of the police officials investigating this matter also believe there's a possibility that this was a premeditated murder. There is suspicion right now that the family objected to the live-in relationship. Both the daughter and her live-in partner didn't like it. There were also issues pertaining to certain debts is also something that's emerging at this point in time. The cops, of course, are trying to trace these two accused. As you heard from the watchman here, they have escaped from this building through the terrace, jumping to another place. As of now, they're moving across the city, and the police, of course, are on their trail and are hopeful to get hold of them. But again, this incident, of course, is a grim reminder of how certain situations can escalate within the family and it can lead to such heinous crimes. With media journalist Govind, this is Deepak Bopana for NDTV. Well, that's all we have in today's edition of The Southern View. We'll be back tomorrow, same time. Thanking all my colleagues who've joined us on this broadcast. News and updates will continue on the other side.

0: blocked path to the roof of the structure, which is why people could not escape. It's also been revealed in 2016 that the illegal construction there was to be demolished. However, that instruction was withdrawn.
1: जो खाने पीने का जो जानवरों का सामान था वो बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। इन बाइक्स को देखिए किस तरीके से, ये जो बुलेट्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर दूसरे व्हीकल हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पर गले हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए इन गाड़ियों की स्थिति और ऊपर की तरफ देखिए एसी के कंडेंसर्स किस तरीके से गले हुए हैं। अब हम आगे बढ़कर सीढ़ी की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे तस्वीरें कि क्या अंदर की स्थिति थी, किस तरीके की चुनौती थी। इन चुनौतियों के बीच से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता आगे बढ़कर इन चुनौतियों को दिखा रहे हैं। कैसे देखिए आग की लपटों का असर किस तरीके से यहाँ पर है, सब कुछ काला हो रखा है। आगे बढ़कर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अंदर की तरफ सब कुछ जला हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो पेट शॉप है, पेट शॉप के अंदर की तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पेट शॉप के अंदर की तरफ जहाँ पर स्टॉक रखा हुआ था ये स्टॉक जल रहा था। और इस स्टॉक को देखिए और समझिए जो इस जगह है सब कुछ बिखरा हुआ है। भीषण आग इसी हिस्से से ऊपर की तरफ चढ़ी थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ अंदर बिल्डिंग के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बिल्डिंग के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरों के साथ हम आपको अंदर का दिखाएंगे। अब उस फ्लोर पर हम पहुँच गए हैं जहाँ पर ये मूल हादसा हुआ और इसके अंदर का स्टॉक है। और सीधे अब उस फ्लोर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेड बॉडीज मिली है, जिस जगह से ये डेड बॉडीज मिली है। और इन डेड बॉडीज के पीछे ये वो दरवाज़ा है जो दरवाज़ा खुला नहीं था और ना खुलने के चलते तमाम डेड बॉडीज थी मिली थी। अंदर की तस्वीरें देखिए, ये गड्ढा खुला हुआ है और इसी गड्ढे से डेड बॉडीज को निकाला गया था। ये वो कंप्यूटर सेंटर है जहाँ पर डेड बॉडीज मिली थी, अंदर की तरफ आग नहीं थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये डेड बॉडीज मिली थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंदर की तमाम, देखिए अंदर आग के बाद किस तरीके से सब कुछ बिखरा हुआ है। अंदर का असर हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर क्या कुछ हुआ था इसी के बाद हमें यहाँ पर तमाम चीज़ें बिखरी हुई दिखाई दी थी। तो देखिए ये वो तस्वीरें हैं, यहाँ तक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आग के अंदर देखिए कैसे यहाँ पर सब कुछ जला बिखरा है। इस कोने से बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे, ये जो कोना है इसी कोने से थार को पकड़कर बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए थे। और ये वो पूरा घटनाक्रम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।
2: इस घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। थाना अलीगंज पर 105 BNS 110 BNS के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है बिल्डिंग के ओनर के विरुद्ध तथा उस बिल्डिंग में चल रहे तीन प्रतिष्ठान के ओनर्स के विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है तथा जेल भेजा जा रहा है।
3: मैंने देखा है, मैंने सब देखा। मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम से देखा था मैंने सब। जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, अगर उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते। बजाय ये वीडियो बनाने के बजाय अगर थोड़ा ध्यान दे लिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते। मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में, मेरी तो दुनिया उजड़ गई।
4: टाइम अनामिका से आपकी मुलाकात कब हुई थी, कोई फैमिली ट्रिप है?
5: बात हुआ बस।
4: दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील करेंगी?
6: बड़ी से बड़ी सजा मिलना चाहिए।
5: सजा तो मिलना चाहिए।
4: आपको सूचना किन्होंने दी?
7: इन्होंने मेरे को 2:15 के लगभग फ़ोन किया कि पापा यहाँ आग लग गई, बचा लो। तब हम लोग आलमबाग से अपने घर से चले, फिर रास्ते में जो है बेटा ने जो है फायर ब्रिगेड वालों को भी फ़ोन किया। फिर रास्ते में सड़क में हमें एक ओबी वैन मिली तो हमने पुलिस वालों को बताया कि हमने कहा भाई ऐसा है, उनके थ्रू भी सूचना भिजवाई। फिर हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ दमकल की गाड़ियाँ वगैरह सब पहुँची थी, पुलिस पहुँची हुई थी। अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली हमारे बेटे के बारे में।
8: हम लोग कालपुर थाना से, हम लोग का थाना है ना, घर का सामने।
4: हाँ।
8: थाना से आया था और हम लोग को इन्फॉर्म किया।
4: हाँ।
8: उसके बाद फोन किया हम।
4: हाँ। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, चार लोग गिरफ्तार हुए।
8: जो आपका ये ऑफिस है इसको ठीक से दिखना चाहिए था, कहाँ क्या है, नहीं इलेक्ट्रिक का सिस्टम है, ये है, ये सब दिखना चाहिए था।
9: आधे घंटे में पुलिस आ गई थी, हम वही 3 किलोमीटर पे हम नहीं जा पाए भैया, वहाँ नहीं जा पाए भैया, वो तैयारी नहीं, वो जॉब आ गया था, वो ऑफिस था, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, वो लाइब्रेरी नहीं थी, वो बच्चे नहीं थे, वो सब सपने तो जाने दूर से, कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर से आया था भैया, किसी का कोई नहीं था, एक एक का नाम पता है मुझे, मेरा एक भाई हेड था वहाँ पे, दूसरा जो मरा है वो काम करता था, अभी अभी वो लगा था,
10: बहुत हृदय विदारक खाब था। उसे तकरीबन 18 बच्चों की जाने गई है, सभी को बहुत
11: इस मोहल्ले से लकड़ाबाग से
10: हमारे बच्चा, ये बहुत शरीफ अपने काम से काम रखता था। कहाँ पढ़ते थे, क्या करते थे?
12: पढ़ता नहीं, तब जॉब कर रहा था, एक हॉपर करके एक ग्राफिक डिज़ाइनर कंपनी थी लखनऊ में, वहीं पर जहाँ आज हादसा हुआ है वहीं पर जॉब करता था, 3rd फ्लोर पर।
10: आपके दोस्त थे तो कैसा स्वभाव था?
12: बहुत अच्छा, बेहद अच्छा।
10: कब से जॉब कर रहे थे?
12: लगभग 2 से 3 साल हो गया होगा।
10: कॉलेज पर वहाँ जॉब कर रहे, 2-3 रोज से नहीं गए थे क्या?
12: 2 दिन से छुट्टी थी ना, सैटरडे संडे, आज मैं सैटरडे संडे ऑफ रहता था हफ्ते में।
10: आपकी कब मुलाकात हुई थी?
12: मेरी परसों शाम को। नहीं कुछ नहीं कहा, बस हम लोग घूमने गए थे वहाँ, क्या नाम, चिन्हट तक, बस फिर वापस आ गए थे। आज दिन में एक बार बात हुई, 1:45 पे,
10: घटना से पहले।
12: हाँ, घटना से 15-20 मिनट पहले। मेरा एक ही दोस्त, सिर्फ एक ही दोस्त था, वो कोई दोस्त नहीं।
0: All right, let's go across now to Ranveer for more on this story. And Ranveer, what is the latest now? The SIT is investigating this entire matter. So many, things have now emerged about how rules were flouted, how this building did not have permission for, you know, 3 stories, or how they had received notices earlier. So all this is now tumbling out. Give us the latest.
13: After spending around 3.5 hours at the fire tragedy site, SIT team visited KGMU, met the injured people. They are the real eyewitnesses of the tragedy, and SIT asked some questions to the injured people. And now the SIT is trying to prove that what kind of lapses, what kind of negligence were inside that commercial property, which was having permission for a residential one. And I am standing outside the residence of Shukla family, which is the owner of that property which burnt yesterday in Aliganj. And this is the house, and you can see a lock outside the house. And the entire family, we can say, fled from their residence, and you can see the building. This is a huge one in Madeganj area of Lucknow. So on the one side, SIT is probing the lapses, the negligences, and also LDF constituted a committee which will find out the documentation, that what kind of permission was given in 2014 and why the notice was revoked back in 2016, because the property which was burnt out yesterday was having a residential permission. The map approved by LDA was residential, but the use of that property was commercial. So this is the main angle of this probe, and we have also seen FSL team at the fire tragedy site, and they inspected, and they are trying to find out the cause of fire. So CM Yogi Adityanath, he is very strict on this issue. The top officials is continuously monitoring the situation, and 6 out of 8 injured people are discharged from hospital, while 2 got serious injuries and they are still in KGMU. And rest of the 15 people who died yesterday, their body are now given to their families, and most of the families have done the cremation and all. So probe is on, and we expect that some kind of stern action and strict action will be taken by UP government so that this kind of tragedy cannot occur in future.
0: Right, Ranveer, and once again, if you can just show us that mansion behind you that is now locked. We do know the four owners have been arrested. Four officials have also been suspended who are overseeing this entire area. 15 lives, lost. The families are totally bereft, and so much anger also over this the fire, the fact that there was no fire exit. The authorities actually had to break the wall behind to let out the smoke and then go in and rescue the children. So if you can just take us through all this and once again show us that house behind you.
13: Okay. A 1,992 square feet building in Aliganj was burnt out, and this was owned by Shukla family. I'm standing in Madeganj, and this is the mansion. This is the house of Shukla family. Yesterday, one of the family member who is the owner of that property was arrested by Lucknow police, and now the entire family is not present here, and a lock can show you the proof. So a Shukla family is had purchased this property in Aliganj in 2013, and they got approval from LDA as a residential property in 2014. And after 2 years, in 2016, LDA given a notice to the property owner and said that why don't we demolish it, because this is a residential one and you are using it in a commercial way. So Shukla family, they given some arguments, and LDA approved that argument and revoked back the demolition notice. So now the question is why that demolition notice was revoked back. Why that that residential property was being used as a commercial one, but no one given any kind of notice since 10 years. So this is the biggest question. There was no emergency exit point. There was no other option so that the people trapped inside the building can get out. So now Shukla family is unavailable. They are fled from this spot, and you can see, I'll again show you the house. It's around 10,000 square feet house, which is owned by Shukla family, the owner of that property, which was burnt out yesterday in Aliganj area of Lucknow. So probe is on. Lucknow police as well as the SIT, the LDA formed team, and also the FSL. Every team is trying to identify that what is the cause of fire, what are the lapses, what are the negligences, and which kind of crime had happened yesterday due to some negligence. A fire tragedy broke out and 15 people lost their lives and 8 are injured, 6 are normal, and 2 are still getting treatment in KGMU.
0: All right, Ranveer, thanks so much for joining us with all the latest developments in this tragic Lucknow fire in which 15 people died, all in their 20s, and many grappling, their families grappling with the questions as to what went wrong and what, rules were flouted. There you can see the faces of the people who died as well as those who have been now arrested. 4 of the owners arrested in this case as the SIT continues to investigate. We'll sip into a short break. More news coming up on the other side. Stay with us.

की रेखाएं पढ़ी जा सकती हैं, उल्लास है, साथ ही कहीं संतुष्टि का भाव भी। हालांकि अलंकृत किए जाने वाले सभी व्यक्तियों ने देश की निस्वार्थ सेवा की है। गणतंत्र मंडप में अब आगमन हो रहा है देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का।

माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए। धन्यवाद। पद्म विभूषण श्री पी नारायणन, साहित्य एवं शिक्षा।

श्री टी जगन्नाथन मरणोपरांत व्यापार एवं उद्योग, उनके पुत्र श्री मुकुंद थट्टे।

श्री भगवान दास रायकवार मन्नू प्रांत खेल बुंदेली मार्शल आर्ट उनके पुत्र श्री राजकुमार रायकवार।

श्रीमती रंजनी एवं श्रीमती गायत्री, कला कर्नाटक संगीत। श्रीमती रंजनी

0: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
1: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
0: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
3: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create

0: That's a fundamental question. SIT, everybody knows all kinds of SIT, whether it's the Congress
1: ruled state or BJP
0: ruled state, their only job is to save, nothing else. First thing has to be done was to lodge an FIR. And then the proper criminal investigation should have started by now. And the people who are responsible are part of the trustee, they should be called for the inquiry and interrogation. I'm not saying take them in custody or put them behind the bar. But at least they should be asked tough questions. This is not the first incident. In 2020-21, Mahipal Singh, the accountant, he made a complaint and he on record that there was something wrong was happening. I informed the Champatra, but nothing has happened. Before the inauguration of the Ram Mandir temple, lot of loot happened in the name of property here and there. And the names belonging to the trust came up. Nothing happened. This is the third incident in the last 6 years. If this can happen to Ayodhya Ram Mandir, then God knows what happened. And the people are still sitting over there. And they are saying nothing has happened. Champatra is saying nothing has happened. So either the Narpendra Mishra is right, Vinay Katiyar is right, or Champatra is right.
2: Okay. Why? Who's right then? Acharya ji, Acharya Pramod Krishnam, who is right? क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं, दो अलग अलग चीजें कह रहे हैं और बार बार यही सवाल उठाया जा रहा है कि बिना किसी प्रोब के पहले से ही क्यों कह दिया गया, चंपतराय जी ने क्यों कहा कि हम ऑडिट कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है. हु डू वी बिलीव?
3: देखिए पदमजा, ये बात पक्की है कि ये जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो चोरी का प्रकरण है, ये बहुत गंभीर है और इसमें कोई शक नहीं है कि इससे करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है. करोड़ों लोग चिंतित हैं और सभी लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड दिस, कौन और हु इज़ बिहाइंड दिस, कौन है कि भाई जिसके इशारे पे ये हो रहा था. ये सारे बड़े सवाल हैं जो करोड़ों हिंदुओं के दिमाग में भी चल रहे हैं और उन लोगों के दिमाग में भी चल रहे हैं जिन्होंने कभी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया. ये बहुत अच्छी बात है कि वो सब लोग जो राम मंदिर को बनते हुए नहीं देखना चाहते थे, वो सब लोग जिन्होंने राम का विरोध किया, वो सब लोग जिन्होंने राम मंदिर को एक दूसरे नज़रिए से देखा, लेकिन आज वो भगवान श्री राम की शरण में हैं और भगवान श्री राम के मंदिर की चोरी पर बहुत चिंतित हैं. ये बड़ी बात है. मगर अब सवाल उठता है कि चोरी किसने की? क्या श्री राम जन्मभूमि न्यास के जो अध्यक्ष हैं नित्य गोपाल दास जी, क्या हम उन्हें चोर ठहरा सकते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया? क्या हम उन अधिकारियों को चोर ठहरा सकते हैं जिन्होंने 5 साल 7 साल दिन रात राम मंदिर के निर्माण में अपना जीवन लगा दिया? क्या हम उनको चोर ठहरा सकते हैं जिन्होंने पूरा जीवन श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में लगाया? तो प्रश्न ये पैदा होता, क्या यूपी के चीफ मिनिस्टर को चोर ठहराया जा सकता है? क्या भारत के प्रधानमंत्री जो राम मंदिर का शिलान्यास और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने गए और पल पल की जानकारी लेते रहे जब 500 साल का ये इतिहास, नया इतिहास रचा गया, 500 साल की एक तरह से लड़ाई को जीता गया, अब इसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब जो कूद पड़ी हैं? सच बात ये है पदमजा, ये गंभीर विषय है. SIT की जाँच हो रही है, SIT ने रिपोर्ट दी है. ये बात पक्की है कि SIT जो रिपोर्ट देगी उस पर भी सवाल खड़े होंगे और अगर कोई और सी अगर जांच करेगी और वो कहेगी साहब श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट जो है ये निर्दोष है, तब भी सवाल खड़े होंगे.
2: नहीं, पर आचार्य जी, आप अगर अगर आप पॉलिटिक्स को एक तरफ रख दें, एक सेकंड के लिए आप समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सबको छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आज कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं, कई ऐसे भक्त हैं जो कि आके कह रहे हैं, एक सिंधी समाज है, वो कह रहे हैं कि हमने करोड़ों का चांदी चढ़ाई थी, कहाँ पर है वो चांदी? वो चांदी की शिला जो है उनको नींव में डालना था, आज हमें पता ही नहीं है कि वो चांदी की शिला नींव में डाली गई है कि नहीं डाली. खुद भक्त पूछ रहे हैं सवाल.
3: ओके पदमजा, आपका सवाल बहुत अच्छा है. नहीं, लेकिन इस देश में या पूरी दुनिया में कौन कह रहा राम मंदिर की चोरी होना अच्छा काम हुआ? सब कह रहे हैं थूतू हो रही है, सब थूतू हो रही है, चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ, हर घर में इसकी चर्चा है, उन सब लोगों में इसकी चर्चा है जो भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं या करते हैं.
2: कुछ लोग ऐसे भी है ना जो अभी भी देयर इन डिनायल. अभी हाँ, अमितोष सेहू यूजुअली इज अ वेरी सेंसिबल पर्सन, ही इज अ लॉयर, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि चोरी हुई कि नहीं हुई.
3: ना मैं तो आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट पदमजा. मैं ये कह रहा हूँ कि जो हालात

0: हालात पैदा हो रहे हैं ये गलत हैं, लेकिन इस पे राजनीति ना हो ऐसा नहीं, संभव नहीं है। राजनीति हो रही है तो जब राजनीति होती है तो उसमें दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को अपना नैतिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए और अपने पदों से हट जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये, मैं तो मांग कर रहा हूँ और मैं इन सभी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी का सम्मान करते हुए, क्योंकि एक सवाल उठा है और राम भगवान राम का मंदिर है, वो भगवान राम जिन्होंने एक सवाल उठने पे अपनी जानकी को राजमहल से दूर कर दिया था, वो भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं उनके मंदिर में ये सवाल उठा है, तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को अपना अपने को दूर कर लेना चाहिए, उन्हें ट्रस्ट को छोड़ देना चाहिए। जब तक जाँच फाइनल होकर के उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती है, क्योंकि भगवान राम के मंदिर के ट्रस्ट जो चला रहे हैं उस ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों के ही सिफारिश पे या उनके फैसलों पर ही ये सब कर्मचारी रखे गए। ये पक्की बात है कि ये कर्मचारियों का घोटाला है, ये पक्की बात है, ये कर्मचारियों ने पाप किया है, लेकिन कोई ना कोई तो इनको संरक्षण दे रहा था। ये सवाल का जवाब आचार्य प्रमोद कृष्णम नहीं देगा, ये सवाल का जवाब ना आप देंगी, ये सवाल का जवाब श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को देना पड़ेगा।
1: एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल आचार्य जी, और आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड, एंड दैट इज,
0: खुद कह रहा हूँ,
1: that is why the sense of denial needs to stop, Shantanu Gupta, to keep saying there is nothing wrong. The fact is that you've got people who were selected by Champat Rai ji. There are people like this Tinnu Yadav. Now Tinnu Yadav, some relative has also become involved in the counting of the cash. Who was supervising all of this? And which is why now even you have people like Acharya Pramod Krishnam who are saying, till the time the inquiry is taking place, shouldn't the office bearer step aside, take responsibility and step aside?
2: See, Padmaja, my point is this. I think nobody is in denial. People are saying, let's not become James Bond on the channel, right? We are six of us. Okay. We have not seen the SIT report. Six of us has not went to Ayodhya and done the prima facie study of the procedure, right? So based on that, just not declare a criminal on a TV channel. After the SIT report, all of this debate is totally valid, for sure. Whatever Acharya ji said, whatever Ashutosh said is totally valid. But today, see, started with Mahipal Singh and Pawan Pandey. Pawan Pandey said 7.5 crore, right? He's a Samajwadi Party neta. Uska dharma hai virodh karna. कोई भी हिंदू चीज है उसका विरोध करना उन्होंने। I'll give you an analogy. In 2021, समाजवादी पार्टी also case the land scam in Ayodhya. As soon as the 2022 election is over, they stopped it. They never filed an FIR. There's a small litmus test for any allegation on the TV channel. If it doesn't travel to the court by that party, मतलब वो केवल allegation है। See, Samajwadi Party has all the incentive to go to the court, क्योंकि फायदा उन्हीं को मिलेगा political, but then
1: now it has traveled to court. Leave the Samajwadi Party. People who believe in Ayodhya, people who believe in Lord Ram, have gone to the Allahabad High Court. Another person has gone to the Supreme Court, asked for a CBI investigation. Again, I'm saying we cannot brush this off as a political project.
2: No, I'm not saying it's a political project. I'm saying Pawan Pandey said 7.5 crore, right? Arvind Kejriwal in some random bite said 200 crore. He said 4 bucks se jawar ke chalenge. Some channels saying 1,000 crores. Utna to chanda bhi nahi aaya. Utse zyada they're putting some numbers, right? So people are only saying, nobody's denying, SIT ki report aane do, usme kya numbers hain, then you can debate. Wo alag baat hai, as Acharya said, wo usko bhi nahi manenge. If the SIT report doesn't concur with their belief system, say nahi, the SIT ki report washed up hai. And they're saying, FIR, so Supreme Court has a guideline that a president and FIR can be after SIT, SIT can be after FIR.
1: Okay, Acharya ji.
2: That's not possible.
1: Acharya ji, kisi ko hatne ki zarurat nahi, jab tak SIT ki report na hai.
0: मैं सुन रहा था उनको, और वो जो बात कह रहे हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है कि अगर कोई किसी पर आरोप लगा दे और वो सब पद छोड़ने लगे तो फिर तो रोज मुख्यमंत्री पे आरोप लगते हैं, मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी पे रोज आरोप लगाते हैं लोग, नेता विपक्ष पे भी लगाते हैं, तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात उनकी ठीक है, बट ये जो विषय है ये लीगल विषय बाद में है, ये जाँच का विषय बाद में है, लेकिन परसेप्शन बन चुका है कि यार वहाँ गड़बड़ हुआ, एक आदमी दूसरे आदमी से ठेले वाला चाय की दुकान पे, नाई की दुकान पे, लस्सी वाले की दुकान पे, पिक्चर हॉल में, सिनेमा हॉल में, एवरीबडी मतलब एनीवे सब जगह हर जगह ये चर्चा है कि यार राम मंदिर में चोरी हो गई, तो ये परसेप्शन बन गया। ये राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, ये कानून का विषय नहीं है। तो मैं विश्व हिंदू परिषद के अपने तमाम जो हमारे प्रवक्ता महोदय बैठे हैं और मुझे लगता है कि वो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, अमितोष जी से मैं कहना चाहता हूँ, ये विषय कानून का नहीं है।

0: कल रात को वहाँ से चलना था, लेकिन वैसे ही जैसे ही वो चलने लगा तो ऑफिस में जाना था, वहीं पे आग लग गई, उसी में फंस गया। हम लोगों को पता ही नहीं चला, हम लोगों को ये पता चला कि कोचिंग सेंटर में लग गया आग, बाद में पता चला कि नहीं उसकी।
1: वन फायर, 15 यंग लाइव्स लॉस्ट एंड काउंटलेस ड्रीम्स रिड्यूस्ड टू एशेस। As investigation intensifies and accountability is debated, grieving families are left with memories, photographs, and final conversations they can never forget. For them, this is not just a tragedy. It's a lifetime of absence. With Ajay Dubey and Ranveer Singh from Lucknow, NDTV Bureau Report.
2: The question now is, was it corruption or was it negligence? All eyes remain on the probe now. Meanwhile, the Lucknow fire that killed 15 young people has triggered inspections across coaching hubs and commercial study centres nationwide. NDTV's reality check travelled to some of the country's biggest education clusters to see whether safety norms exist only on papers or not.

0: There's nothing wrong. The fact is that you've got people who were selected by Champat Rai ji. There are people like this Tinnu Yadav. Now Tinnu Yadav, some relative has also become involved in the counting of the cash. Who was supervising all of this? And which is why now even you have people like Acharya Pramod Krishnam who are saying, till the time the inquiry is taking place, shouldn't the office bearer step aside, take responsibility and step aside?
1: Padmaja, my point is this. I think nobody's in denial. People are saying, let's not become James Bond on the channel, right? We are six of us. Okay. We have not seen the SIT report. Six of us has not went to Ayodhya and done the prima facie study of the procedure, right? So based on that, just not declare a criminal on a TV channel. After the SIT report, all of this debate is totally valid, for sure. Whatever Acharya ji said, whatever Ashutosh said is totally valid. But today, see, started with Mahipal Singh and Pawan Pandey. Pawan Pandey said 7.5 crore, right? He's a Samajwadi Party neta. Uska dharma hai virodh karna. Koi bhi Hindu cheez hai, uska virodh karna. Unhone, I'll give you an analogy. In 2021, Samajwadi Party also case the land scam in Ayodhya. As soon as the 2022 election is over, they stopped it. They never filed a FIR. There's a small litmus test for any allegation on the TV channel. If it doesn't travel to the court by that party, matlab wo keval allegation hai. See, Samajwadi Party has all the incentive to go to the court because fayda unhi ko milega political. But then
0: now it has traveled to court. Leave the Samajwadi Party. People who believe in Ayodhya, people who believe in Lord Ram have gone to the Allahabad High Court. Another person has gone to the Supreme Court, asked for a CBI investigation. Again, I'm saying we cannot brush this off as a political project.
1: No, I'm not saying it's a political project. I'm saying Pawan Pandey said 7.5 crore, right? Arvind Kejriwal in some random bite said 200 crores. He said 4 bucks se jawar ke chalenge. Some channels saying 1000 crores. Utna to chanda bhi nahi aaya. Utse zyada they're putting some numbers, right? So people are only saying, nobody's realizing SIT ki report aane do, usme kya numbers hain, then you can debate. Wo alag baat hai. As Acharya said, wo usko bhi nahi manenge. If the SIT report doesn't concur with their belief system, say, nahi, the SIT ki report botched up hai. They're saying FIR. So Supreme Court has a guideline that a president that FIR can be after SIT, SIT can be after FIR.
0: Okay, Acharya ji.
1: That's not possible.
0: Acharya ji, kisi ko hatne ki zarurat nahi jab tak SIT ki report na hai.
2: नो मैं सुन रहा था उनको और वो जो बात कह रहे हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है कि अगर कोई किसी पर आरोप लगा दे और वो सब पद छोड़ने लगे तो फिर तो रोज़ मुख्यमंत्री पे आरोप लगते हैं मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए प्रधानमंत्री जी पे रोज़ आरोप लगाते हैं लोग नेता विपक्ष पे भी लगाते हैं तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा मैं उनकी बात से सहमत हूँ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात उनकी ठीक है बट ये जो विषय है ये लीगल विषय बाद में है ये जाँच का विषय बाद में है लेकिन परसेप्शन बन चुका है कि यार वहाँ गड़बड़ हुआ एक आदमी दूसरे आदमी से ठेले वाला चाय की दुकान पे नाई की दुकान पे लस्सी वाले की दुकान पे पिक्चर हॉल में सिनेमा हॉल में एवरीबडी मतलब एनीवे सब जगह हर जगह ये चर्चा है कि यार राम मंदिर में चोरी हो गई तो ये परसेप्शन बन गया ये राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है ये कानून का विषय नहीं है तो मैं विश्व हिंदू परिषद के अपने तमाम जो हमारे प्रवक्ता महोदय बैठे हैं और मुझे लगता है कि वो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं अमितोष जी से मैं कहना चाहता हूँ ये विषय कानून का नहीं है कानून में तो बरी हो जाएंगे कानून में अगर मान लीजिएगा SIT कहती है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कोई इसमें रोल नहीं है तब भी लोग कहेंगे यार रोल था तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को फॉलो करने वाले हैं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अंदर उन लोगों को रखा गया जिनकी श्रद्धा आस्था निष्ठा संकल्प शक्ति सारी की सारी राम मंदिर में है और थी मैं उन पे उनके किसी भी क्रेडिबिलिटी पर उनकी किसी भी कार्य कुशलता पर उनकी कार्य क्षमता पर उनकी ईमानदारी पर बिल्कुल प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ लेकिन नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए उन्हें अपने अपने पदों से हटना चाहिए मैं ये कहना चाहता हूँ जिससे कि देश की जनता और विदेश में
3: पद्मजा
2: मानने वाले लोगों को ये मैसेज जाए ये संदेश जाए कि हम भगवान राम के अनुयायी हैं हमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से कुछ नहीं लेना देना क्योंकि समाजवादी पार्टी पद्मजा और कांग्रेस पार्टी के इतने पाप हैं
0: एग्जैक्टली अमितोष जितना ये सेंस ऑफ डिनायल दिखेगा यू विल सीम मोर डिफेंसिव इट विल सीम लाइक यू आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग देयर विल बी पॉलिटिशियंस हु विल ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन दैट
2: कमीशन
0: टेक द मॉरल हाई ग्राउंड
3: Padmaja, let me be very clear. First of all, the very initiative point is, I think the dust should be removed from our appearances. We are here sitting before you, countering every nook and carry all the allegations which have been put to defame the image of Sanatan Dharma, we are not here sitting to defend the people who may or may not be involved in the theft, as will be proved by the SIT report. I very much second the thought of Shantanu. He said it will be very much, very, very pre-initiative if we come and say the

0: 2016 for unauthorized construction, which was later revoked. And this puts the scrutiny, the spotlight on the Lucknow Development Authority. It brings urban bodies under intense scrutiny. But this incident has also become a broader flashpoint for accountability, with residents and civic groups demanding answers from not just local urban bodies, but also from their elected representatives. It has become a political flashpoint, with the BJP and Samajwadi Party, both in Uttar Pradesh, sparring with each other on who really is at fault here. Let's listen in to some reactions.
1: A phone call, a desperate plea, a father's worst nightmare. Papa, there's a fire. Please save me. Those were the last words 23-year-old Sukhmani Singh spoke to his father before the flames swallowed the building in Lucknow's Aliganj. Today, that call echoes through homes shattered by grief.
2: उन्होंने मेरे ना 2:15 बजे के लगभग फोन किया पापा यहाँ आ लग गई बचा ले
1: For Anamika's family, the journey from Kolkata ended not with a reunion, but at a mortuary. Her mother collapses repeatedly, unable to bear the loss of the daughter who had come to Lucknow chasing dreams and a career. Just days ago, these were moments of happiness. Today, they are memories the family clings to. 27-year-old Nilesh had spent nearly 4 years building a future in the software field. His mother and sister now sit surrounded by unanswered questions and unbearable silence.
3: Fire wicked times se pahunch jati hai apne bachao ke liye mere bhai ne apne aap ko bathroom mein band kar liya socha ki bach jayega par utni der mein fire wicket pahunch jate to shayad mera bhai hum log ke saath hota.
1: Aditya Srivastav's mother watched helplessly as smoke billowed from the building for hours. She waited, hoping for a miracle that never came. For Abdul Rahman's family, the tragedy has taken away their sole breadwinner. For Suraj Bhan's family, it has left behind a home with no earning member.
4: कल रात को उसको आना था, तो अचानक वो कल रात को वहाँ से चलना था। लेकिन वैसे ही जैसे ही वो चलने लगा, तो ऑफिस में जाना था, वहीं पे आग लग गई। उसी में फंस गया हम लोगों को पता ही नहीं चला हम लोगों को ये पता चला कि कोचिंग सेंटर में लग गया आग बाद में पता चला कि नहीं उसकी
1: वन फायर 15 यंग लाइव्स लॉस्ट एंड काउंटलेस ड्रीम्स रिड्यूस्ड टू एशेस एज इन्वेस्टिगेशन इंटेंसिफाइज एंड अकाउंटेबिलिटी इज डिबेटेड ग्रीविंग फैमिलीज आर लेफ्ट विद मेमोरीज फोटोग्राफ्स एंड फाइनल कॉन्वर्सेशंस दे कैन नेवर फॉरगेट फॉर देम दिस इज नॉट जस्ट अ ट्रेजेडी इट्स अ लाइफटाइम ऑफ एब्सेंस With Ajay Dubey and Ranveer Singh from Lucknow, NDTV Bureau Report.
0: A horrific tragedy today. We now have Sunil Barala. He's a former Minister of State in the UP government. Thank you, Mr. Barala, for speaking to NDTV. So, horrific tragedy here. A lot of blame game is going on. And there is a sense that Samajwadi Party is also saying that it's entirely the government's responsibility. There was no vigilance, there were no checks. Who do you think is responsible for the 15 lives that were lost yesterday?
5: देखिए ये इतनी दर्दनाक घटना हुई है लखनऊ के अंदर इस घटना के लिए मैं सबसे पहले जो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी जीवन की शुरुआत भी नहीं की थी वो जीवन से चले गए मैं उनके प्रति अपनी बहुत ही शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान परशुराम जी से उनको उन परिवार को शोकाकुल परिवार को शांति दे ऐसी भगवान परशुराम जी से कामना करता हूं ऐसी दुखद घटना किसी दुश्मन को भी ना मिले जिस प्रकार की वो घटना घटी है तो उससे बहुत ही मन बहुत व्यतीत है बहुत दुखी है और इस घटना पर बहुत ही वास्तव में ये दर्दनाक हुई है और ये दर्दनाक घटना अपने मतलब मन को
0: सर इस घटना का जिम्मेदार कौन है
5: देखिए जिम्मेदार तो सारी घटनाओं का
0: आप ही की तो सरकार है ना भाजपा की सरकार है पिछले कई सालों से
5: जिम्मेदार तो भगवान होते हैं उन्होंने जैसा करना होता है लेकिन जिम्मेदारी जो ये वर्तमान की यहाँ की है वो ऐसे लोगों की है ऐसे कर्मचारियों की है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जो लोग मतलब केवल वो अपने तत्कालिक अपने लिए सोचते हैं अपने लिए जीते हैं अपने लिए मरते हैं वो